अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

असुर संतहित लेन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार सिया बलराम चंद्र की जय श्री अयोध्या राम लला की जय श्री पवन सत्ता।

शरदाय विद्महे श्वेतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण तैलव्रताय नमो प्रतिक्षितात्मनुपाततलोकाय नमस्तादुपादनिकर्षणाय नमो ब्रह्मण्डदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरेका मुमुक्षुरुपासका विमतानरूपा गुणविभवैश्वर्यशीलात्यनवधिक अतिशरसङ्ख्यकल्याणगुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणमहम् प्रपद्ये। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमले सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि नमस्करोमि। Hey, hey.

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

और हिंदू पंचांग के मुताबिक ये श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। श्रोताओं, श्रावण के इस पवित्र महीने की पवित्र सुबह के पवित्र प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। आइए इस मुकद्दस सुबह का शुभ आरंभ करते हैं आस्था और प्रार्थना के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, नेविज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों से ताज़ा सूचनाएं, मौसम की अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे संवाददाताओं की जो विशेष रिपोर्ट्स होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोतो आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का यह विशेष प्रसारण। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं आप तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि हालिया वर्षा के बाद यात्रा मार्ग के कुछ हिस्सों में मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त से चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से यात्रा जो है वो स्थायी तौर पर निलंबित रखी गई है। लेकिन आपको बताते चले कि यह विराम यात्रा के इख्तिताम का संदेश नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम मुख्तलिफ क्षेत्रों में जो हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ताज़ा तरीन जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। मैं हूं आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। जैसा कि मैंने पहले आप तक ये सूचना पहुंचाई थी कि आज जो है यात्रा जो है वो फिलहाल के लिए निलंबित रखी गई है। इस बीच जो है हमने हमारे संवाददाता जो जम्मू के हैं जावेद मेहराब साहब, उनसे रब्ता करने की कोशिश की और वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जावेद मेहराब साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम सबसे पहले तो उस परिस्थिति की बात करें जिस परिस्थिति की वजह से ये तीर्थ यात्रा जो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल स्थगित रखी गई है। वो है मौसम। और मौसम इस पूरी यात्रा में एक बहुत बड़ी एक परिस्थिति के तौर पर उभर कर सामने आता है, क्योंकि मौसम की वजह से ही ये यात्रा जो है उन तमाम कोशिशों, उन तमाम जो कठिनाइयों और उस तमाम लोगों की जो न सिर्फ कर्मचारियों से लेकर प्रशासन से लेकर उन तमाम मजदूरों और तमाम मतलब उन हजारों लोगों की मेहनत तभी रंग लाती है जब मौसम उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मौसम जो है वो बराबर जो है बादलों से घिरा हुआ है, और न सिर्फ जम्मू में बल्कि घाटी की भी जानकारी है कि मौसम पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये यात्रा स्थगित रही। और जिस तरह से मैंने कहा कि हजारों जो कर्मचारी हैं, हजारों जो लोग हैं, इस तीर्थ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए जिस तरह से कोशिशें की जा चुकी हैं अभी तक की, वो वाकई सराहनीय है, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने, लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पहुंचकर न सिर्फ यहाँ की मेहमान नवाजी और यहाँ के प्यार मोहब्बत के साथ इस तीर्थ यात्रा को पूरा भी किया है, और हंसी खुशी और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने घरों को लौटे भी हैं। पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा का ये पर्व जम्मू कश्मीर में हर बरस नहायत ही जोश खरोश के साथ शुरू होकर यहाँ की उसी मेहमान नवाजी और प्यार मोहब्बत की मिसाल बनकर उभरता है, और इस वर्ष भी पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा उसी प्यार मोहब्बत और मेहमान नवाजी से शुरू हुई, जिसमें तमाम संस्थानों, जिसमें प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सुरक्षा एजेंसियां, स्वयंसेवी संस्थाएं, बाजार एसोसिएशन, स्थानीय लोग और समाज के तमाम लोगों ने मिलकर एक नए अध्याय की एक बार फिर मिसाल बनकर वो तमाम कोशिशें की, जिसकी वजह से यात्रा कामयाबी के साथ अभी तक अपना सफर पूरा भी कर रही है और लगातार ये जारी भी है। इस दौरान मौसम की एक परिस्थिति ही होती है जिसकी वजह से यात्रा कई बार स्थगित रखनी पड़ती है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अन्य भागों की तरह सीधा नहीं है, पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर है, और उसके बाद भी घाटी के बाद जब घाटी पहुंचकर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो दोनों मार्गों का ये सफर सख्त पहाड़ी श्रृंखलाओं का सफर है, और इसमें एडवाइजरीज का, इसमें तमाम आपकी आपके स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और खास तौर पर जब आप उन पगडंडियों से, उन ट्रैक्स से चलते हैं, वहाँ आपकी मौसम की जो परिस्थिति है एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, और जब मौसम साफ होता है तो वो सारी जो मेहनत की गई होती है वो सामने रंग भी लाती है, और लाखों लोगों ने, इस लाखों श्रद्धालुओं ने, मैं कहूं कि दर्शन भी किए, जो एक बड़ी जिंदा मिसाल भी है। 3 जुलाई को शुरू हुई ये तीर्थ यात्रा, अभी तक लगभग 4,80,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के द्वार पर हाजिरी देकर दर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त कर चुके हैं, और लगातार यहाँ से पहले निवास स्थान से शुरू हुई यात्रा अनुशासन, आस्था, आपसी प्रेम, सद्भाव के अलावा कड़ी मेहनत, तैयारियों, समीक्षाओं, सख्त सुरक्षा घेरे और रात दिन पहाड़ी रास्तों और सख्त पहाड़ी श्रृंखलाओं के दरमियान, मौसम की बदलती परिस्थितियों के दरमियान, एक बड़े चैलेंज के बावजूद एक बड़ी कामयाबी की मिसाल बनकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की लामिसाल मेहमान नवाजी प्यार स्नेह और कुर्बानी की सबसे बड़ी प्रतीक बनकर उभरी है, और
0: बिल्कुल
1: ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड भी है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर इस तीर्थ यात्रा को एक कामयाब बनाया है इस वर्ष भी। और ये एक बड़ा चैलेंज होता है पहले दिन से, न सिर्फ प्रशासन के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी, उनकी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी जो है, उनका जो जो जो उनका जो आपसी, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से ये लगातार सदियों से
0: रिवायत चल
1: यात्रा
0: रही है,
1: हमारी
0: बिल्कुल
1: हमारी पहचान रही है, और इस पहचान को बनाए रखने में यहाँ के स्थानीय लोगों का, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है, और वो मिलकर सब उसी प्यार स्नेह और कुर्बानी के साथ तय भी करते हैं। तीर्थ यात्रा को लगातार दोनों ट्रैक्स पर चलाया जाना, जहाँ प्राचीन पहलगाम का ट्रैक मशहूर खूबसूरत भी है लेकिन सख्त भी है, और लिदर नदी का जो नजारा होता है उसकी जो खूबसूरती होती है, या पहाड़ी जो सफर है इसमें खास तौर पर चंदनवाड़ी के बाद, वो सख्त के बावजूद भी श्रद्धालुओं की पहली पसंद रहा है। और उसी तरह से सिंध नदी के किनारे, खूबसूरत सिंध नदी के किनारे और ये बालताल मार्ग भी लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस दौरान कई बार लगातार मौसम की परिस्थितियां, बार बार मौसम की परिस्थितियां इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बारिश के दौरान सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यात्रियों का ट्रैक्स पर चलना होता है, और इस बार जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से अपना एक रोल निभाती है, लेकिन इस बार ट्रैक्स की हिफाजत के लिए, ट्रैक्स को सुरक्षा कवच बनाने में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम रोल है, और उन्होंने ये रोल मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि उन पहाड़ी इलाकों में जहां से होकर ये श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूरी कतार में होते हैं, और उस कतार के साथ सबसे बड़ा खतरा होता है कई बार भूस्खलन का, कई बार ट्रैक्स के निकलने का, कई बार जो जो घोड़े यहाँ से निकलते हैं या उनके उनको किस तरह से चलाया जाए। तो साथ साथ जो लोग एक साथ मिलकर चलते हैं, एक साथ मिलकर उसी अनुशासन के साथ चलते हैं और एडवाइजरीज के साथ चलते हैं, और उसमें खास तौर पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियां रही इस यात्रा को चलाने में, वो अहम रोल निभाती रही, क्योंकि भविष्यवाणियों के होने
0: आधार
1: से ही
0: पर बिल्कुल
1: यात्रा एक कामयाबी की तरफ चली है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं चैलेंज, उस चैलेंज को लेने से पहले ही जब भविष्यवाणी आती है तो आप सतर्क हो जाते हैं, और आपकी एडवाइजरीज पर जो अमल श्रद्धालुओं ने भी किया है, और श्रद्धालु भी उन एडवाइजरीज का पालन कर उस कवायद को पूरा करते हैं, और श्रद्धालु भी अनुशासन के साथ तमाम एडवाइजरीज का पालन कर ये यात्रा को कामयाब बना रहे हैं। 28 अगस्त को संपन्न होने वाली ये यात्रा तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर छड़ी मुबारक को पहलगाम के प्राचीन मार्ग से उसी सैकड़ों वर्ष की जो हमारी प्राचीन हिस्ट्री है वो या हमारी तारीख है उसको पूरा कर पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा, और इस दौरान पूजा अर्चनाओं का भी सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ भी मंदिरों के शहर में यहाँ जो श्रावण का महीना है, जम्मू में धार्मिक पर्यटक लगातार लाखों की संख्या में आते हैं हर बरस माता वैष्णो देवी के द्वार पर, और पवित्र श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के लिए एक अलग स्नेह और प्यार यहाँ के स्थानीय लोगों में भी है, और प्रशासन ने भी उसको बेहतर बनाने के लिए हर बरस नई कोशिशें होती हैं यहाँ को, यहाँ उनके लिए इंतजाम रखने के लिए। जैसे इस बरस खास तौर पर तभी रिवर फ्रंट का एक बहुत बड़ा एरिया बनाया गया, जहाँ पर तीर्थयात्रियों ने तमाम सुविधाएं रखी गई, तमाम उनके लिए प्रबंधन रखे गए ताकि उन्हें किसी भी तरह से कोई
0: कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल
1: उन्हें किसी
0: जावेद साहब माजरत के साथ मैं यहाँ पे काटना चाहूंगी, चूंकि अब आखिरी अयाम में यात्रा जो है चल रही है, मैं जानना चाहूंगी चूंकि आप कई सालों से जो है यात्रा के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कैसा तजुर्बा है जो आप पहले दिन जब आपने रिपोर्ट किया था और आज जब कर रहे हैं, तो किस तरह से एक मुख्तलिफ तजुर्बा इसको आप देखते हैं?
1: देखिए, इसमें सबसे बड़ा तजुर्बा ये होता है कि पहले तो इस तीर्थ यात्रा की तैयारियों को लेकर लगभग 1 महीना पहले ही ये तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा कोई एक आम चैलेंज नहीं है, एक बड़ा चैलेंज होता है स्थानीय लोगों के लिए, शहर शहर के लिए भी, क्योंकि तमाम तरह के इंतजाम प्रशासन और कर्मचारियों ने करने होते हैं, और उसके लिए 1 महीना पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं,
0: जी
1: जिसमें तमाम लोगों से सहयोग लिया जाता है और सहयोग के साथ ये यात्रा चलती है। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है, क्योंकि इस तीर्थ यात्रा में आस्था, भाव, मोहब्बत, अनुशासन और जिस तरह का ये मेल मिलता है
0: बिल्कुल
1: स्थानीय लोगों का, मेहमान नवाजी का जो स्नेह और प्यार है, और उसके अलावा जिस तरह से तीर्थ यात्रा को चलाया जाता
0: देखिए,
1: है,
0: मेहमान
1: इसमें
0: नवाजी तो
1: तमाम
0: हमारे खून में ही बसी है और वो तो शुरू से ही आज तक आखिर तक वो तो हमेशा ही रहेगी
1: बिल्कुल
0: यकीनन। लेकिन कुछ तब्दीलियां आपने महसूस की होगी जब पहले यात्रा होती थी और आज इतने सालों के बाद आप देख रहे
1: देखिए,
0: हैं।
1: यात्राएं तो होती थी, लेकिन इंतजाम और समीक्षाएं
0: जी
1: जो
0: जी
1: हैं
0: बिल्कुल
1: हर बरस अपनी तौर पर होती हैं, और जब हर बरस एक नई समीक्षा हर बरस हर दिन
0: बिल्कुल
1: एक नई समीक्षा होती है,
0: सही
1: और उन समीक्षाओं में चेंज किए जाते हैं, आप हर दिन छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी भी, और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग भी
0: जी जी
1: यात्रा को लेकर अपने मशवरे देते हैं, और उसमें यात्रा में चेंज की बात होती है, तो परिस्थितियां बदलती हैं। जिस तरह से इस बार मैं बताऊं आपको, खासतौर पर मैं जम्मू की बात करूंगा, तो यहाँ कई बार जो इंतजाम होते थे उसमें स्थानीय लोगों को सड़क के आवाजाही जो होती
0: जी
1: है,
0: जी
1: ट्रैफिक
0: जी
1: की आवाजाही कई
0: जी
1: बार उनकी कई सड़कों पर बंद हो जाती थी, क्योंकि तीर्थ यात्रा को चलाना होता था,
0: बिल्कुल
1: और कई सड़कें जब बंद हो जाती थी तो यहाँ का जो जो स्थानीय आम नागरिक है उसे कॉलेज भी जाना है, नौकरी
0: बिल्कुल
1: पर भी जाना
0: परेशानियां
1: है, अपने काम पर भी जाना है, और उसके साथ साथ तीर्थ यात्रा का भी ख्याल रखना है। तो उस परिस्थिति में इस बार जो यहाँ तवी रिवर फ्रंट का जो एक नया शिविर बनाया गया, पिछले साल ये शिविर जहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर था वहां 2 सड़कें बंद थी, जिसमें आम स्थानीय नागरिक नहीं चल सकते थे पूरे 2 महीने के इस अंतराल तक, लेकिन इस बार जब इस तीर्थ यात्रा को एक नई जगह पर मुंतकल किया गया, बड़ी जगह पर मुंतकल किया गया, और यहाँ एक नई प्रबंधन बनाए गए जिसमें
0: जी
1: तीर्थ यात्रियों के लिए भी आसानी होती है, उन्हें बाहर निकलने की, अंदर आने की, उनके लिए चिकित्सा की, योगा की, उनकी पंजीकरण में, उनके रजिस्ट्रेशन में जिस तरह की चेंज लगातार सामने आई है, वो अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि हर एक तीर्थ यात्री को आपने रजिस्टर करना है, जहां तीर्थ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को रजिस्टर करना है, वहीं जो इस संस्थान के साथ जुड़े और लोग हैं जिनमें
0: जी
1: लंगर समितियां हैं, जिनमें अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग सेवा भाव के साथ इस तीर्थ यात्रा के साथ चलते हैं, उन्हें भी रजिस्टर करना है, सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, और साथ साथ हर एक चीज

0: का ख्याल रखना है जिसमें तीर्थ यात्रियों की जो आसानी बनी रहे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, होता है प्रशासन के लिए भी, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए भी, और साथ साथ जो स्थानीय लोगों को, बाजार एसोसिएशंस को मिलकर एक जो जब बैठकें होती हैं उसमें वो अपने मशवरे देते हैं, तो ये एक अच्छी बात सामने आती है। और एक नया जो प्रबंधन, नई समीक्षा के साथ नई आसानियां पैदा हो जाती हैं। जहां आप स्थानीय लोगों को अलग करते हैं, सामाजिक लोगों को अलग करते हैं, धार्मिक स्थानों को, संस्थानों को अलग करते हैं, और खुद एक कई बार सरकार कहीं कुछ फैसला कर देती है, तो उसमें फिर वो आसानियां पैदा नहीं होती हैं। तो इस बार जो है खासतौर पर प्रशासन ने मिलकर इस तीर्थ यात्रा को चलाया है, और सभी के साथ के साथ और सभी की विश्वास के साथ इस तीर्थ यात्रा में सबको अपना एक साथी के तौर पर बनाया है, जिसमें न सिर्फ ये तीर्थ यात्रा चली है बल्कि जम्मू का पर्यटन भी, पर्यटन को लेकर भी यहाँ के विभिन्न विभागों ने, जिस तरह से यहाँ का पर्यटन विभाग है उसने कोशिशें भी की है कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ तीर्थ यात्रा करवानी है बल्कि यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उन तक भी पहुँचाना है, जिसके लिए एक राही सर्विस भी शुरू की गई, जो जिसको सराहा श्रद्धालुओं ने बहुत हद तक, और यहाँ उन्हें भी मौका मिला जम्मू के विभिन्न स्थानों तक जाने का, और यहाँ के प्राचीन मंदिरों में, यहाँ की पर्यटक स्थलों तक जाने का उन्हें भी मौका मिला। तो नई स्कीमें, नई नई जो समीक्षाएं होती है उसके बाद जो फैसले आते हैं, और उसके बाद जब ये सेवाएं शुरू होती है तो नेचुरली है कि ग्राउंड पर वो दिखता भी है और श्रद्धालुओं ने उसका मजा भी लिया है, और खास तौर पर जो रजिस्ट्रेशन की परिस्थिति को आसान बनाया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, उसकी वजह से भी ये एक आसानी बनी रही है श्रद्धालुओं के लिए। तो एक बहुत अच्छी समीक्षाएं जो होती हैं वो श्रद्धालुओं के लिए आसानियां पैदा करती हैं, और ये हमने देखा भी है इस अपने इस पूरे एक्सपीरियंस में कि श्रद्धालुओं के लिए जो फैसले लिए जाते हैं मिलकर, जो फैसले लिए जाते हैं स्थानीय लोगों के साथ, सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर जब ये फैसले लिए जाते हैं, तो वो न सिर्फ यात्रा के लिए बल्कि ओवरऑल जो यहाँ का, क्योंकि यहाँ का कारोबार भी जुड़ा है पर्यटन से जम्मू कश्मीर का, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है और उनके लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो जाती है।
1: जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, हम सब इसी सेवा में लगे हैं, इसी कोशिश में लगे हैं कि हमारे जो भी मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी में, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे और वो संतुष्ट होकर यहाँ से वापस अपने घरों को लौटे, और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद आने वाले वक्त में जो है मज़ीद सुविधाएं जो है वो यात्रा के लिए इंशाल्लाह और बेहतरी उनमें आ जाए। आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। श्रोताओं, ये थे जम्मू क्षेत्र से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब, जो वहाँ के हवाले से और टोकुल जो यात्रा रही है अभी तक उसके हवाले से अपने अनुभव जो है वो हमें, हमारे साथ साझा कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, आगे भी बातें होंगी, जो कि आज ये जो आखिरी आयाम होते हैं यात्रा के, इनमें बहुत सारे जो है त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत से पूजा जो होते हैं मुख्तलिफ वो किए जाते हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे और हमारे संवाददाताओं से भी बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। मैं हूँ आज आपकी रेडियो साथी, आपके संग शाइस्ता बुखारी। श्रोताओ, आज कामे का एकादशी का पवित्र दिन भी है और हिंदू धर्म में ये दिन भगवान विष्णु की भक्ति और उपवास और आत्म शुद्धि के लिए अहम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के तय जो है तुलसी अर्पण और सत्विक आचरण की रिवायत है। आइए आज हम भी एक संकल्प ले, क्रोध की जगह शांति, अहंकार की जगह जो है विनम्रता और नफरत की जगह प्रेम को जगह दे, क्योंकि सच्चा उपवास सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, मन की शुद्धि का भी एक रास्ता है। हम साथ ही हमारी बहुत ही प्यारी मैडम रेखा जी जो हमारी है निरंजन साहिबा, उनको भी वेलकम करते हैं, उनको भी स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में, जो हमेशा हमसे जुड़ी रहती हैं और हमें मोहब्बतों से नवाजती हैं।

और हम हमारे दिल में जो हमारे मन में भी उनके लिए बहुत ही प्रेम भरा रहता है हमेशा, और वो हमेशा जो है हमसे राबते में रहती है, हमें हमारे हमारा जो हौसला है उनको जो है मजीद बुलंद करती है, हौसला अफजाई करती है, एनकरेज करती है, फीडबैक देती रहती है, और हम कभी जो है उनकी ये जो रहनुमाई है वो नहीं कभी भूल सकते हैं। रेखा जी आपका, रेखा मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमसे जुड़ी रहती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे यात्रा के हवाले से, हिंदू धर्म की मुख्तलिफ जो त्यौहार और रसूम है उनके हवाले से बात करेंगे, और साथ ही हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे जो मुख्तलिफ क्षेत्रों में संवाददाता मौजूद हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं हमारे अनंतनाग के संवाददाता एस तारिक साहब। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है आज अनंतनाग में यात्रा के हवाले से। एस तारिक साहब, हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष प्रसारण में।
1: बहुत शुक्रिया सईदा शाइस्ता जी।
0: जी, क्या
1: विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को भी मेरा शुभ प्रभात। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब 20 दिन शेष रह गए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहलगाम से पवित्र गुफा तक यात्रा मार्ग पर आज मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ अभी हल्की बारिशें हो रही है। पहलगाम और चंदनवारी के इलाकों में आज दर्जे हरारत 6 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। यात्रा मार्ग के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम नस्बतन ठंडा और नमी से भरपूर है। बारिश और धुंध के सबब पहाड़ी मार्ग पर फिसलन पैदा होने का भी अंदेशा है। हाल ही में हुई भारी बारिशों के सबब यात्रा मार्ग के कई हसास मकाम पर मरम्मत और रखरखाव का काम जारी है। ये काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जानिब से किया जा रहा है। मौसम के नामुवाफिक हालात और यात्रा मार्ग पर जरूरी मरम्मत का काम पेश नजर प्रशासन ने आज 9 अगस्त से चंदनवारी और बालतर दोनों मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा मुलतवी रखने का फैसला किया है। रीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बताया कि भारतीय मौसमी विभाग की जानिब से आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम के नामुवाफिक रहने की पेशगोई की गई है। श्रद्धालुओं की हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हुए ये फैसला लिया गया है कि याद रहे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का आगाज 3 जुलाई को हुआ था, जबकि यात्रा का समापन 28 अगस्त को रिवायती छड़ी मुबारक के साथ ही होगा। तो अगर हम दर्शन की बात करें तो अब तक 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी यात्रा की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। रीजनल कमिश्नर ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अपने हिफाजत और यात्रा की सुचारू पुरामन और सगम संपोषण के लिए प्रशासन की जानिब से वक्तन फवक्तन जारी की जाने वाली निर्देश और सलाह पर सख्ती से अमल करें। प्रशासन के अनुसार यात्रा की बहाली का निर्णय मौसम की सूरत हाल और यात्रा मार्ग की हालत का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। तो जब तक ये हमारी कामना रहेगी कि बाबा बर्फानी के सभी श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके हैं या दर्शन करने जा रहे हैं की मनोकामनाएं पूरी हों और इनकी यात्रा सुखद

0: सुरक्षित और मंगलमय रहे। जी
1: जी तारिक साहब, हम जानना चाहेंगे कि क्या आज यात्रा जो है, आज कुछ यात्री जो है यहाँ पर मौजूद है वादी गाठी में इस वक्त, या फिर सभी जो है वो घर वापसी उनकी हो चुकी है?
0: तकरीबन तकरीबन जो मैं जिला अनंतनाग जो
1: जी
0: जहाँ
1: जी
0: हमारा जो रिवायती रोड है पहलगाम से,
1: बिल्कुल।
0: वहाँ इस वक्त कोई यात्री मौजूद नहीं है। तो धीरे धीरे जो वहाँ नुनवन बेस कैंप है वहाँ से भी कुछ टेंट्स को वाइंड अप कर दिया गया है
1: जी
0: जो वहाँ से प्राइवेट लोगों ने लगाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, 600 से ज्यादा वहाँ टेंट लगे हुए थे, अब कम कर दिए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है यात्रा के आखिरी दिन चल रहे हैं और यात्रा अब धीमी रहती ही है,
1: बिल्कुल
0: ये तरतीब भी है हमेशा की तरह। अब यात्रा अगर आएंगे तो बहुत ही कम लोग आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ आ चुकी है, लगभग ये 4,80,000 को टच कर गया है, जो कि टारगेट 4.5 लाख तक था, तो उससे ज्यादा आ गए हैं और भी कुछ आने वाले हैं। तो इसके बाद अभी यहाँ बालतल की बात करें तो मुझे श्रीनगर में कुछ यात्रीज हैं, अभी
1: जी
0: श्रीनगर से जो हमें इतला मिली है जो बायर या दूसरे जरियों से आते हैं, जो जत्थे के साथ नहीं आते हैं, वो लोग अभी मौजूद हैं।
1: जी
0: उनको भी बिल्कुल जाने की अनुमति मिलेगी जब ट्रैक को दुरुस्त पाया जाएगा, जब
1: जी
0: मौसम की हालात सही हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी जो इंतजामात है तो वो या इंतजार जो है वो खासकर इस ट्रैक से जो हमारे पहलगाम ट्रैक से है, तो वो है छड़ी मुबारक का।
1: जी
0: छड़ी मुबारक आपको पता ही है कि वो यात्रा से पहले 3 दिन पहलगाम पहुंच जाती है, जहाँ त्रिरात्रि गुजार कर वो धार्मिक तरीके से
1: जी
0: जगह जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे अपने जो धार्मिक जो अनुसरण होता है या इबादत होती है वो करते हैं, और इसी के साथ फिर यात्रा का इख्तिताम भी होता है। तो अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट अभी हम यही कहेंगे कि अनंतनाग में ऑलमोस्ट पहलगाम वगैरह साइड पे कोई यात्री भी मौजूद नहीं है।
1: जी तारिक साहब, हम जानना चाहेंगे, चूंकि अब आखिरी आयाम, जैसे आपने कहा कि आखिरी दिन चल रहे हैं यात्रा के हवाले से, तो कुल जो आपका तजुर्बा रहा अभी तक यात्रा का, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं?
0: कि मैं ज्यादातर मैंने वक्त पहलगाम में ही दिया, मैं यात्रियों से मिला हूँ, मैं चंगलवारी तक जो हमारी रसाई थी तो हम वहां तक गए, हम यात्रियों से मिले, जितने भी यात्रियों से हम आज तक मिले हैं सबों ने जो प्रशासन के द्वारा जो भी जो व्यवस्थाएं रखी गई थी, चाहे उसमें हेल्थ हो, चाहे इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे इसमें सिक्योरिटी का मामला हो,
1: जी
0: चाहे इसमें जल बिजली जितने भी विभाग है, हर एक की सेवादारी, बल्कि हम यूं कहेंगे कि यहाँ के लोकलों की सेवादारी, पोने वालों की सेवादारी, घोड़े वालों की सेवादारी तक वो बड़े उसमें बिल्कुल मुतमाइन थे कि उन्होंने कोई अभी तक शिकायत नहीं की थी कि अभी हमें कोई परेशानी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और इंतजामात में किसी चीज की भी कमी हमें नहीं दिखी है, जो मैं जिसका मैं खुद भी गवाह हूं कि किसी चीज की कमी नहीं थी,
1: जी
0: हर जगह पे जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा वहाँ व्यवस्थाएं रखी गई थी। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि एक कामयाब यात्रा है, जिसके जो भी लोग जो भी स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे वो दाद की काबिल है, कि वो उन्हें मुबारकबादी है कि उन्होंने
1: बिल्कुल
0: अपने एहसान तरीके से यात्रियों का, श्रद्धालुओं का जबरदस्त ख्याल रखा, और उनके जो मजहबी जो उनका जो रिवायती ये सफर था, इस सफर में वो उन्होंने उनकी सहायता भी की है और अपनी ड्यूटी भी निभाई है, तो लोगों ने भी बड़े बढ़ चढ़ कर उनका इस्तकबाल भी किया है, और हमेशा जहाँ जहाँ भी थे उनके उस मामले में उन्होंने मदद भी की है। जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस को मैंने देखा है जो अपनी ड्यूटी सिक्योरिटी की ड्यूटी निभाते रहे, लेकिन साथ साथ वो यात्रियों की हेल्प करते हुए देखे गए हैं,
1: बिल्कुल
0: उन्होंने अपने कंधे पे उठाया, उन्हें उनके माल असबाब को अपने कंधे पे उठाया। और इसी तरीके से जितने भी विभाग हैं, सफाई की बात करें तो सफाई बहुत ज्यादा थी, प्रशासन ने उस हवाले से बहुत यहाँ ग्रीन यात्रा को नाम से उसको
1: जी
0: इंट्रोड्यूस किया था कि हम
1: बिल्कुल
0: इस बार ग्रीन यात्रा को हमेशा की तरह, तो ग्रीन यात्रा को इंट्रोड्यूस किया, उसके हवाले से कोई वेस्ट मैनेजमेंट वाले जितने भी इसके साथ जुड़े हुए थे सबों ने बेहतरीन काम किया है। तो ले दे के हम यही कहेंगे कि यात्रा बिल्कुल कामयाब रही, यात्रा इसी मंशा के मुताबिक चली, जिस मंशा के मुताबिक सरकार चाहती थी या प्रशासन चाहता था, तो हमने भी देखा है कि किसी चीज की चूक नहीं थी।
1: जी ये सफलता जो है ये हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है। आखिर पर मैं जानना चाहूंगी कि अगर मौसम विज्ञान

0: बाग की बात करें तो क्या कुछ पूर्वानुमान जो है आज किया गया है इनके द्वारा?
1: मौसम उस आपको पता ही है कि चूंकि ये एक अचानक सा इस साल इस वर्ष एक मौसम ने अलग ही करवट बदली है।
0: बिल्कुल
1: तवील मुद्दत तक ये अभी हम कहेंगे तकरीबन 20 दिन से अभी बारिशों का सिलसिला जारी है,
0: सही
1: होती है नहीं भी होती है, और गर्मी का भी एकदम बहुत ज्यादा असर रहा है। दोनों चीजें मिला जुला कर मौसम ने हमें कुछ नए तजुर्बे दिए हैं, नई एक्सपीरियंस रही है। तो इस एक्सपीरियंस के साथ अगर आज भी मौसम को हम देख लेंगे तो मौसम के भी करवटें बदलती रहती है, जहाँ मौसमियात के जो विभाग होते हैं रात को एक प्रडिक्शन करते हैं,
0: जी
1: सुबह मौसम नई करवट बदल देता है और मौसम की नई प्रडिक्शन आती है, नई भविष्यवाणी आती है। तो अभी मौसम के बारे में भी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता जब
0: जी
1: तक
0: जी
1: मौसम अपना रंग न दिखाए। तो
0: बिल्कुल
1: फिलहाल अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम ने इस ट्रैक को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। बार बार इसकी मरम्मत करनी पड़ी, बार बार उसकी जो फिसलन
0: सही
1: वाला रोड था उसको ये जो बीआरओ के लोग थे एहलकार थे वो बार बार उसकी ठीक करते रहे, क्योंकि ये एक सख्त पहाड़ी इलाका है और दुश्वार गुजार इलाका है जहाँ से गुजरना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम थे तो वहाँ उम्र से हद भी गुजरने वाले लोग भी गुजर गए हैं,
0: बिल्कुल
1: और अगर किसी ऐसे भी थे विकलांग कुछ लोग थे वो उस रास्ते से गए। ये सब प्रशासन की जो बेहतरीन इंतजाम थे, तो बार बार इस पे वो बने रहे इस ट्रैक को ठीक करने में,
0: जी
1: तभी ये मुमकिन हुआ है कि ऐसे लोग वहां गुजर गए,
0: बहुत
1: लेकिन इस वक्त में तो
0: बहुत जी जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब, क्योंकि यहाँ से खबरों का वक्त हुआ जाता है इसलिए माजरत के साथ हम आप को जो है आपसे राबता जो है नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए, आगे भी बातें होती रहेंगी। श्रोताओं आप जी सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण। श्रोताओं तो ये थे अस्तारिक साहब जो अनंतनाग से हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। अब खबरों का वक्त हो रहा है, समाचार सुनने के लिए चलिए दिल्ली स्टूडियो की तरफ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श

0: किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: घर घर तिरंगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने

0: दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर अखबार का शीर्षक है हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटे

0: उपग्रहों की मरम्मत भी अस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 4.5 करोड़ कावड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस टुडे, कोइंसाइडिंग विद 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अपॉइंटमेंट ऑफ 30 जजेस फॉर हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास, कैलकटा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका नोटिफाइड। अमरनाथ यात्रा टू रिमेन सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ पहलगाम एंड बालताल रूट्स ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक्स एंड फोरकास्ट ऑफ बैड वेदर। IMD इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल इन उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ टुडे। साग्निक रॉय एंड सायंतन कुशारी विन गोल्ड मेडल इन अंडर 31 पेयर्स एट 9th वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप्स। एंड नाउ द न्यूज इन डिटेल। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities.

0: Merchants clarifies the government. In a piece titled Growing Old, the statesman argues, for generations, aging was associated with restraint. People slowed down, spent less, took fewer risks, and gradually ceded social and economic space to younger generations. That understanding is being overturned. Longer life expectancy, better health care, and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, hills of fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after barrage cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने जनाब वैंस और उनकी अहलिया उषा वैंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमीकंडक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र किया और कहा कि भारत तमाम शोबों में खुद कफील बनने की समत में काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खुद किफालत की एक कोशिश विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगी।
3: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी मफाद

0: अपने फैसलों के मरकज में रखें।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। गुज़िश्ता बरसों में यह हकीकी तौर पर लोगों की तहरीक बन गई है जो मुल्क के सभी खित्तों और बिरादरियों को भारत के इत्तेहाद, वक़ार और मजमूई कौमी शनाख्त का जश्न मनाने के लिए तहरीक देती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम खुसूसी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की भी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी गीत और कौमी परचम का एक साथ होना हुब्बुल वतनी का मुनफरिद जश्न है। तकरीबात के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा यौम आज़ादी की यादगार के तौर पर 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की हौलनाकियों को याद किया जाएगा ताकि मुल्क की तकसीम के बाईस होने वाली तकलीफों, मसाइब और बेघर होने जैसे हौलनाक वाकयात को याद रखा जा सके। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में खामोश मार्च निकाले जाएंगे। मुल्क की तकसीम से मुतालिक नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही सकाफत की वजारत ने लोगों से कौमी परचम पर फख्र का इजहार करते हुए इसे लहराने और कौमी गीत वंदे मातरम को सीखने और गाने की हौसला अफजाई की है। बैरून मुल्क भारत के 200 से ज्यादा सिफारतखाने, हाई कमिश्नर और कौंसिल खाने इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद करेंगे। इस साल की अहम तकरीब सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले है जिसमें 54 भारतीय मिशन शिरकत करेंगे। यह रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कौंसिल जनरल पर खत्म होगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात पुद्दुचेरी पहुंचे जहां लोक निवास में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वक्त जनाब शाह गोरी मैदू के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में पुद्दुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
3: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में पुदुचेरी पुलिस को खुसूसी परचम पेश करेंगे। सदर जमहूरिया ने 8 मई को पुदुचेरी पुलिस को उनकी गैर मामूली खिदमात, नज़्म व ज़ब्त और मुमताज़ हुसूलियाबियों के एतराफ़ में पुलिस कलर अता किए जाने का ऐलान किया था। इस मौके पर पुलिस की मुख्तलिफ शाखों के जवान खुसूसी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन, वजीर आला एन रंगासामी और उमूर दाखिला के वजीर एम ए निमिश्वाम भी मौजूद हैं। दोपहर को जनाब शाह पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पुदुचेरी से विभिन्न इसनाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आज़ादी की जद्दोजहद का एक नाकाबिल फरामोश बाब है जिसने बरतानवी हुकूमत के जुल्म जबर और नाइंसाफी के खिलाफ मुसल्ला इनकलाबी तहरीक को नई रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल की क्यादत में बहादुर मुजाहिदीन आजादी ने अपनी बेमिसाल जुर्रत और अज़्म के जरिए बरतानवी हुकूमत को यह पैगाम दिया कि मुल्क के वसाइल उसके अवाम की मिल्कियत हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क काकोरी ट्रेन एक्शन के तमाम अजीम मुजाहिदीन आजादी की हमेशा एहसान मंद रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया है। इन तकरूरियों में सबसे ज्यादा 15 जज मद्रास हाई कोर्ट के लिए मुकर्रर किए गए हैं। कानून और इंसाफ की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तकरूरियों में 20 वकील और 10 अदालती अफसरान शामिल हैं। मद्रास हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर 15, कलकत्ता हाई कोर्ट में 8, कर्नाटक हाई कोर्ट में 6 और मध्य प्रदेश हाई

0: कोर्ट में एक जज की तकरूरी अमल में आई है। ये तकरूरियां सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मशावरत के बाद की हैं। नए तकरूर करदा जजों से तवक्को है कि वो आने वाले दिनों में अपने ओहदे का हलफ लेकर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इन तकरूरियों से चारों हाई कोर्ट्स में जजों की खाली आसामियों को पुर करने और जेर अल्तवा मुकदमात के जल्द निपटाने में मदद मिलने की तवक्को है। JPSC और JSSC की भर्ती के इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले झारखंड के तलबा आज रांची में रियासती हुकूमत के नुमाइंदों के साथ एक और दौर की बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का अगला दौर आज दोपहर के करीब होने वाला है। हुकूमत की कमेटी ने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की और तलबा के साथ पहले दौर की बातचीत में होने वाली पेशरफ से उन्हें आगाह किया। हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान आला सतह की बातचीत का पहला दौर कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में खुशगवार माहौल में हुआ। हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि वो इम्तिहान के निजाम में जामे इस्लाहत के लिए पुरअज़्म है। इसी दौरान तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने कहा कि तलबा गुज़श्ता 15 दिनों से गैर मुइना मुद्दत के धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अपने मुतालबा तफसील के साथ हुकूमत के सामने रख दिए हैं। तलबा का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती उनकी तहरीक जारी रहेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान अब्र आलूद रहेगा और यहां हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए तेज से बहुत तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बाज मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के बायस येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज रियासत के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पावड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में बाज मकामात पर तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात के पेश नजर कुदरती आफात से निपटने और बाद आबादकारी के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने तमाम मुतालिका अजला को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। महकमों को जरूरी वसायल और आलात तैयार रखने और सड़कों पर रुकावट पैदा होने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत भी दी गई है। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, रास्तों की मरम्मत के काम और आइंदा चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के बायस आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। ये फैसला यात्रियों की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। रामबन जिले समेत कश्मीर के बाज इलाकों में बारिश और खराब मौसम के हालात के पेश नजर एहतियाती तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। 3,336 यात्रियों ने कल पवित्र गुफा के दर्शन किए और सरहदी सड़क तंजीम BRO खराब रास्तों की मरम्मत और देखभाल का काम अंजाम दे रही है। हुकाम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी हिदायत और एडवाइजरी पर अमल करें। चीन के हेफई में मुनक़िदा 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सियानतन कुशारी ने 31 साल तक की जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। पहले मरहले के आखिरी राउंड में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और सरफहरिस्त 14 जोड़ियां, जिनमें भारतीय जोड़ी भी शामिल है, फ्लाइट ए में पहुंच गई। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के IIT दिल्ली के 57वें सालाना

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा ये विशेष प्रसारण। इस वक्त आपको बताते चले कि हमारे जो गांदरबल के संवाददाता है रहीम रिजवान साहब, वो इस वक्त लाइन पे बने हैं हमारे साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे पहले सूरत हाल के हवाले से, और उसके बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। रहीम रिजवान साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में। जी रहीम रिजवान साहब, तो क्या कुछ संदेश है आज यात्रा के हवाले से, क्या कुछ सूचनाएं हैं
1: यात्रा के हवाले से? पहले हम बादलों के मौसम के बारे में बात करेंगे कि आज भी यहाँ वर्षा हो रही है सुबह सवेरे से ही, और ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ टेंट वाले हैं, लंगर वाले हैं, उनको कल शाम को ही आदेश मिला है कि आप वाइंड अप कीजिए। ये तो सुबह सवेरे जो विजुअल हमारे पास मौजूद है उससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह भारी वर्षा हो रही है, और वर्षा के कारण जो ये यहाँ थोड़ा कचरा दाएं बाएं घर जो देखने को मिला बिल्कुल साफ हो रहा है। ऐसी सुंदरता कहीं देखने को नहीं मिल रही कि सुबह सवेरे नाले सिंध का बहता हुआ पानी और ये तेज वर्षा जो हो रही है, और कभी कहीं नजर आ रहे थे कुछ टेंट जो है वो अभी भी लगे हुए है वहां पे, लेकिन उन्हें कायद खाली करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी हमारे हैं वो बिल्कुल चाकोचौबंद नजर आ रहे हैं, बालतल में बल्कि पवित्र गुफा तक बराबर लगे हुए हैं। जितने भी अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीकन के अहलकार और मुख्तलिफ विभागों के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल चाको चौबन वहाँ पे तैनात अभी भी हैं। इसके साथ साथ जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं या चिकित्सा केंद्र जो हर पड़ाव पर कायम किए गए हैं वो अधिकारी भी अभी बालतल में ही मौजूद हैं, ताकि जो हमारे अगर कोई यात्री वहां पे हो उसको भी वापस रवाना कर दिया गया कड़ी सुरक्षा के बीच। और इसके साथ साथ जो टेंट वाले वगैरह हैं वो भी वहां से अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, जबकि चंद कचर और घोड़े वाले जो हैं या पालकी वाले जो हैं वो पहले ही

0: चाहिए कि सरकारी जहाँ मुझे एजाद शुमार बताया जाता है सरकार की, वही मुझे पेश करनी चाहिए, जो सूरत हाल है वही मुझे पेश करनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए। लेकिन हमें बहुत कोशिश की है, चाहे लोगों के हवाले से, यहाँ का वातावरण जो है, यहाँ का भाईचारा उखवत जो है, जो मैंने वो काफी कोशिश की कि हम वही हकाई सामने लाएं जो हमें लाना चाहिए, और जिससे हमारी छवि जो है कश्मीर की वो बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: बरकरार है। और साथ ही यहाँ की रानाई जो है ये तो खूबसूरत है ही, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, वो भी हम अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश करें। और यात्रियों के साथ हमने बात जो की है, अच्छे व्यूज शेयर किए, उन्होंने भी अच्छे तरीके से इस वर्ष जो है इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि
1: जी
0: ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले नहीं हुआ करती थी। आपने पूछा था कि पहले जब रिपोर्टिंग हम करते बाहर कर जाते थे, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन इस वर्ष गुजशत एक दो वर्षों के दौरान हम देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं, सुरक्षा के कड़े किस तरह प्रबंध किए जा रहे हैं, यात्रियों को किस तरह लाया जा रहा है और वापस दर्शन करके उनको किस तरह भेजा जा रहा है, तो उनको पहले स्वागत किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा।
1: कोई खास वाक्य जो आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, इस यात्रा का जो सफर रहा है इतने सालों का, तो कोई खास मोमेंट, कोई खास लम्हा?
0: इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, हम और फख्र है मुझे कश्मीरियों पे
1: जी।
0: और मुझे भी, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी हालात हो,
1: जी जी,
0: हम अपनी जो हमारी असलियत है उसको छुपाने से हम कासिर नहीं है, क्योंकि सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तो हमें वही अपनी असलियत दिखानी चाहिए जो हमारे रगों में, हमारे असलाफों ने हमें दी है। तो मुझे फक्र हुआ कि हम किस तरीके से एक इंसान को काम आते हैं इस यात्रा के दौरान। नो डाउट, मैंने पहले भी कहा आपको कि लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही कम है उसके सामने जो वो मेहनत करते हैं ईमानदारी से, तनदेही से, या जो उन्होंने चीज खोए हैं बालतल के दौरान यात्रियों को, और वो हमारे नौजवान, हमारे यहाँ के लोगों ने उनको वापस किए हैं। मुझे गर्व है इस पर और मुझे फख्र है हमारे कश्मीरियों पर कि हम किसी को काम आते हैं और आते रहेंगे।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये तफसीलात पहुंचाने के लिए रहीम रिजवान साहब। और हमारी भी यही कोशिश रहती है, जो कि हम ऋषियों और मुनियों की जो भूमि है, धरती है कश्मीर, इसकी रिवायत रही है, परंपरा रही है हमेशा के, हमारे मेहमान जो भी हैं उनका हम बहुत अपनी जान से बढ़कर जो है ख्याल रखते हैं, और इस रिवायत को बरकरार रखते हुए हम भी ये जो है विशेष प्रसारण इस वक्त चला रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे जो मेहमान हैं यात्री उनके लिए। तो बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आगे भी बात होती रहेगी, इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करते हैं रहीम रिजवान साहब। जी श्रोताओं, ये थे रहीम रिजवान साहब जो गांदरबल से हमारे साथ जुड़े थे और अपना अनुभव जो इतने सालों का इनका है, चूंकि बहुत सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं यात्रा के हवाले से, वो हमसे साझा कर रहे थे। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण में, हमारे साथ मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। इस वक्त मैं आपके संग बनी हूँ, आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में।
1: ना सदा सीनो सदा सीतदानीं ना

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, आपको बताते चले कि हालिया वर्षा के सबब यात्रा के रास्ते के कुछ हसास हिस्सों में मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता महसूस की गई है। इन मकामात पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जानिब से ट्रैक की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले चंद दिनों में मौसम के विपरीत रहने की पेशगोई भी की गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सहूलत को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 2026 से चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से यात्रा को स्थायी तौर पर जो है निलंबित रखा गया है। आपको बताते चले कि 57 दिवसीय श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभ आरंभ इस साल 3 जुलाई को हुआ था। यात्रा चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से एक साथ शुरू की गई थी और अब तक 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में भगवान श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में। आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। हमारे और जो संवाददाता है मुख्तलिफ क्षेत्रों में, उनसे भी बात होगी और समाचार सुनने का वक्त भी कुछ ही देर में है। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और सुनिए भक्ति संगीत।

उम्मीदवार की उम्र 21 से 50 साल तक के दरमियान मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रिहायश पजीर अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 15 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक आकाशवाणी श्रीनगर के रीजनल न्यूज यूनिट में जमा कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मजीद तफसीलात और मतबू दरख्वास्त फॉर्म वेबसाइट www.newsonair.gov.in वैकेंसी से हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ लाजमी दस्तावेजात के अलावा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर आकाशवाणी श्रीनगर के नाम 354 रुपए का नॉन रिफंडेबल बैंक ड्राफ्ट बतौर प्रोसेसिंग फीस रखना लाजमी है, जबकि एससी एसटी और ओबीसी जमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस से मुस्तस्ना रखा गया है। उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तहान और वॉइस टेस्ट से गुजरना होगा। मुंतखब होने वाले कैजुअल न्यूज रीडर्स कम ट्रांसलेटर्स को जरूरत की बुनियाद पर बुकिंग दी जाएगी। मजीद तफसीलात के लिए हमारे फोन नंबर 7006958620 या 0194245201 से रब्ता किया जा सकता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: श्रोतो आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेवज न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन साहब, जो कि रामबन से हमारे संवाददाता है। हालांकि बहुत पहले ही इनसे हम रिपोर्ट ले चुके होने चाहिए, जरा सी ताखीर के बाद आज इनसे राबता हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ तफसीलात है आज यात्रा के हवाले से। मोहम्मद तस्कीन साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया। हम पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे। हाईवे ठीक है, हल्की हल्की बारिशें रात पर हुई, कुछ जो रामबन बनहाल उधमपुर स्ट्रेच है तो इसमें जो बारिशों का सिलसिला जारी था रात भर, लेकिन सुबह से बादल तो हैं लेकिन बारिशें थम चुकी हैं और खुशगवार मौसम बना हुआ है। इस दौरान जैसा कि मालूम है कि आज यात्रा दूसरे दिन से सस्पेंड रही और आज 9 अगस्त से ये फैसला किया गया है कि फिलहाल यात्रा को सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि ट्रैक वगैरह के काम वगैरह करने हैं जो बारिशों की वजह से डैमेज हुए हैं या जो नुकसान पहुंचा है ऊपरी इलाकों में, जो जहां बालतल के रास्ते या पहलगाम के रास्ते, तो उस वजह से ये फिलहाल यात्रा को मुअत्तल

0: किया है, जैसा कि कल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग साहब ने इस बारे में एक बाजाबता तौर एक मतलब प्रेस रिलीज एक ऐलान जारी किया है। इस दौरान जो यात्रा यहाँ सस्पेंड रही, जम्मू से कोई ट्रैफिक चलने नहीं दिया गया, तो इस दौरान जो पहलगाम ये जो पिलग्रम्स जो वापस आ रहे थे बालतल के रास्ते, जिनने अब तक जो दर्शन किए हैं, जो बेस कैंप में ठहरे हुए थे बालतल के, तो उन्हें आज जम्मू की तरफ आने की इजाजत दी गई है। 588 यात्री जो इस वक्त 53 गाड़ियों में सवार हैं और वो रामबन डिस्ट्रिक्ट से गुजर कर आगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका यहाँ जो बनिहाल में सुबह नाश्ता वगैरह हो गया, तो उसके बाद उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया गया है। आज 37वां दिन है यात्रा का, और अभी अगर जो जो फिगर्स जो ऑर्डर ऐलान जो था तो उसके मुताबिक अभी 21 दिन यात्रा के बाकी हैं, और अभी मतलब 21 दिन मजीद हैं जो यात्रा जो 28 अगस्त को समाप्त होनी है, खत्म होनी है। तो इससे इस दौरान जो आज जो मौसमी सुरताल है, बादल है, बारिशें हुई है, लेकिन यात्रा जो रूट्स हैं जो यहाँ पर अगर बालतल से कहेंगे हम जम्मू तक, ट्रैफिक बिल्कुल थ्रू है। और अभी जो श्री अमरनाथ यात्रा के जो वापस जो काफिले आ रहे हैं, 53 गाड़ियां हैं, 588 यात्री हैं, वो अभी जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: जी, बहुत शुक्रिया इस इन मालूमात के लिए। हम मजमुई तौर पर आज हमने कोशिश की, चूंकि आखिरी दिन चल रहे हैं यात्रा के हवाले से, तो हमने मुनासिब जाना कि हम तजुर्बों की बात करें, कैसा तजुर्बा सब का रहा है यात्रा के हवाले से, चूंकि आप भी कई सालों से जुड़े हैं यात्रा ट्रांसमिशन के साथ, तो कैसा अनुभव रहा आपके आपका यात्रा के हवाले से?
0: बिल्कुल बहुत जबरदस्त, इसमें जो अगर कहेंगे तो हर साल के साथ यात्रा में जो बेहतरी आ रही है, अगर हम आज से 10-12 साल या 7-8 साल पहले जाएंगे, या मतलब जब यात्रा शैतानी नाला के रास्ते जाती थी, जवाहर टनल के रास्ते जाती थी, तो वो एक हेक्टिक होता था, हाईवे की हालत खराब थी, अगर थोड़ी भी बारिशें हो जाती बहुत मुश्किल होता था, सिंगल लेन ट्रैफिक चलता था। आज तो 4 लेन है मैक्सिमम बनाया गया, तो सबसे पहला ये एक प्लस पॉइंट रहा जो अब पिछले 2 साल से हम कहेंगे, इस साल खासकर क्योंकि इस साल कुछ टनल्स खोल दिए गए यात्रा के वक्त पर, कुछ वायाडक्ट जैसे फ्लाई ओवर जिन्हें कहते हैं वो खोल दिए गए रामबन बनिहाल स्ट्रेच में, तो उससे एक जो यात्रा का जो उनका उनके लिए जो एक्सपीरियंस खासकर यात्रियों के लिए कहेंगे वो ज्यादा बेहतर हो गया पिछले सालों के मुकाबले में। जब शैतानी नाला के रास्ते जाता था तो एक करीबन जम्मू से श्रीनगर तक का करीबन 8 घंटे का सफर रहता था, श्री अमरनाथ यात्रा का 9 घंटे का, जो आज करीबन 3.5-4 घंटों में ही तय किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 4.5-5 घंटे खाने पीने का लगा कर नाश्ते का करके, तो ये मतलब हर साल के साथ साथ इसमें तब्दीली आती रही है, और जो मतलब आगे भी हम मजीद यकीन कर ये मतलब अहमियत रखते हैं कि अगले साल भी, क्योंकि अभी हाईवे का कुछ स्ट्रेच जो है अगर 10-12-15 किलोमीटर का स्ट्रेच हम रामबन बनिहाल सेक्टर में कहेंगे उसे अभी काम किया जा रहा है, अभी कुछ टनल नए तैयार किए जा रहे हैं, तो जिससे ये जो तजुर्बा कहेंगे एक्सपीरियंस कहेंगे वो ज्यादा बहुत अच्छा मतलब हो जाएगा, साबित होगा यात्रियों के लिए भी हमारे लिए भी। जो पास्ट की यात्रा हुआ करती थी उस वक्त और इस वक्त में थोड़ा सा ये भी फर्क आया कि पहले जो लोगों को एक्सेस होता था यात्रियों को खाने पीने की चीजें बेचने का, अब वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, हालांकि इस साल भी कोशिशें की गई थी बहुत जगहों पर लेकिन उसमें अलाउ नहीं किया गया सिक्योरिटी रीजंस को रखकर, तो वो चीजें थोड़ा गायब होने से उससे यात्रा जो है आम लोगों के साथ घुल मिल जाते थे, रुकते थे, मतलब यहाँ लोग जो है अपने घरों से फ्रूट वगैरह लेकर यात्रियों को पेश करते, तो वो भी एक जमाना हमने देखा है कि जब सड़कों पर लोग
1: मोहब्बत से पेश करते थे, बिल्कुल
0: प्यार से रेट करते थे, उनको अखरोट देते थे, उनको सेब देते थे, उनको खोबानियां पेश करते थे, तो उसमें थोड़ा सा अब चेंजिंग आया है, उसमें सिक्योरिटी रीजंस का ही खासकर बताया जाता है, तो वक्त के साथ साथ जो बेहतरी आई है अगर कुल मिलाकर कहेंगे, जो इंतजाम है हर साल के मतलब मुकाबले में हर अगले दूसरे साल जो है उसमें बेहतरी आती है, जिसका बराह रास्त फायदा यात्रियों को भी होता है, जो यहाँ सफर करने वाले सफर मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले 7-8, 8.5 घंटे जम्मू से श्रीनगर तक लगते थे, कभी 9 घंटे भी ट्रैफिक को लगते थे, लेकिन वो अब बिल्कुल बदल चुका है वो सिलसिला, 4.5-5 घंटों में क्योंकि नेशनल हाईवे जो है NH 44 उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन पूरा कम्प्लीट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा फर्क है और कश्मीर में तो पूरा 4-way

0: है जब टनल के पार हम हो जाएंगे, तो इसलिए ये चीजें जो है मतलब ये तब्दीली हम देख रहे हैं जब से यात्रा शुरू हुई है। हम पिछले अगर देखेंगे तो 25-30 साल से मुसलसल देख रहे हैं, मैं 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो उसमें तो यात्रा का जो था पिछले कई सालों से, जो अब हाईवे बना है हमारा बनिहाल काजीगुंड टनल खुला है 8.5 किलोमीटर का, इससे डायरेक्ट हो गया 16 किलोमीटर हमें उधर ही काम हो गया है जब हम
1: जी
0: जवाहर टनल के रास्ते जाते थे। तो ये चीजें जो है ये बहुत वो माने रखती हैं, जिससे एक यात्री को भी और आम लोगों को भी इससे बराह रास्त फायदा हो
1: जी
0: रहा है।
1: तस्किन साहब, चूंकि कहा जाता है कि तकरीबन 5 लाख के करीब, 4,80,000 जो यात्री है अभी तक ये आंकड़ा पार कर चुका है, जो एक बड़ा आंकड़ा है, तो ये इससे भी जाहिर होता है कि किस कदर सुविधाएं जो है वो रखी गई हैं, इंतजाम किस कदर रखे गए हैं। यहाँ तक कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है यात्रा पे लगातार उनको देखा गया है यात्रा के हवाले से। तो क्या कोई आपका यादगार कोई लम्हा रहा हो जो आज भी आपको याद हो यात्रा के हवाले से, वाइल्ड रिपोर्टिंग यात्रा ट्रांसमिशन?
0: देखिए, इस साल अगर कहेंगे मुझे लगता था ये ज्यादा जाना था, ऊपर जाना था फिगर्स, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, सता है कि 5 लाख के करीब लोगों ने दर्शन किए अब तक
1: जी
0: श्री अमरनाथ यात्रा के, जो हो आए पवित्र गुफा से। तो ये मजीद ऊपर जाना था, लेकिन जो मौसमी खराबी बीच में हो गई,
1: सही
0: जिसकी वजह से अगर हम कहेंगे तो मजमुई तौर पर जो हमारा अभी 37 दिन यात्रा के हुए, तो इसमें अगर कहेंगे तो करीबन 8 दिन हमारा हाईवे बंद रहा,
1: जी
0: जिसमें 6 दिन तो मुसलसल बंद रहा, जिसमें 2 दिन फिर अलग अलग दिनों में यात्रा को रोकना पड़ा, तो मुख्तलिफ वजूहत या सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर। तो जो तजुर्बात क्या कहेंगे, बहुत सारे मतलब इससे वाबस्ता है यादें, क्योंकि यात्रा के लिए जो मतलब पहले जो था, जो पहले होता था, उससे बहुत तब्दीली आई है। अब बहुत सारा जो सिस्टम है वो बहुत तब्दील हो चुका है, जिसमें हम अगर जैसे मौसमी सुरताल का कहेंगे, उसको अपग्रेड किया गया है, पहले पता नहीं होता था। जैसे बहुत साल पहले की बात है कि यात्रा आ गई तो एकदम बारिशें हुई, बंद हो गया ट्रैफिक, मतलब शायद 2 दिन तक, ये मेरे ख्याल में 7-8-9 साल पहले की बात है।
1: जी
0: तो उन दिनों वो चीजें अब थोड़ा ऐड हुई है इसमें, कि जैसे हम एडवांस रिडार सिस्टम से या बाकी चीजों से हमें ये मौसमी सुरताल का पता चल जाता है, बाकी चीजों का हमें
1: बिल्कुल
0: मतलब एडवांस में थोड़ा सा इल्म हो जाता है कि बारिश आने वाली है या मौसम खराब होने वाला, तो उसी हिसाब से फैसले भी लिए जाते हैं। तो वो चीजें इस साल, और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात जो कहेंगे तो वो ये कि हाईवे से, जो हाईवे नेशनल हाईवे से गुजर कर जो यात्रा जाती है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि मतलब कोई बड़ा हादसा पेश नहीं, एक दो छोटे मोटे हादसे हुए इस साल भी, पिछले
1: जी
0: साल भी हुए थे, और उसका कोई जख्म मतलब कोई किसी की मौत नहीं हुई, या कोई किसी किस्म का ओवरऑल जो है बेहतर रहा, तो उसमें बेहतरी आई है। अब जो मजीद जो अभी तक जो यात्रा का मजमुई तौर पर जो कहेंगे तो बहुत ही मतलब कामयाब तरीन
1: बिल्कुल
0: यात्रा तक रहेंगे, अगर 2026 की कहेंगे अब तक, जैसे जब शुरू की थी यात्रा 2 जुलाई से, तो हमारा 9,837 यात्रियों का सबसे बड़ा जत्था जो है
1: जी
0: 8 जुलाई को ये रवाना किया गया यहाँ से जम्मू के भगवती नगर से। तो इसी तरह जो ओवरऑल जो है बहुत सारी यादें हैं इसमें, तो ये हम कोशिश करेंगे कि दूसरे
1: जी
0: ट्रांसमिशन में आपको
1: जी
0: तफसीलन
1: जी
0: एक इस
1: जरूर
0: पर एक
1: बिल्कुल,
0: डिटेल्ड
1: अभी
0: रिपोर्ट
1: अभी
0: बनाए,
1: कुछ
0: कि
1: दिन बाकी हैं। बिल्कुल
0: बिल्कुल, क्योंकि
1: जी
0: अभी चल रहा है। तो और बाकी इंतजाम का कहेंगे तो कोई नामुल बदल ही नहीं इनका, इतने बड़े इंतजाम, बड़े पैमाने के इंतजाम किए गए, जो 35 जिलों में यात्री है उनको हर तरह की जो सुविधा दी गई, हर तरह की फैसिलिटी रखी गई, जगह जगह पर इंतजाम है, जम्मू से लेकर हम कश्मीर तक कहेंगे कि जो 3 मेन स्टेशन हमारे हैं, जैसे जम्मू का सबसे पहले भगवती नगर है, उसके बाद रामबन का यात्री निवास है, उसके बाद बनिहाल का एरिया हुआ या लांबर ग्राउंड में, तो इंतजाम बहुत बढ़िया थे हर लिहाज से, जो यात्रियों के लिए जैसे हजारों की तैदाद में ट्रीट किया गया यात्रियों को, जो
1: बिल्कुल
0: छोटी मोटी तकलीफ होती है जब पहाड़ों पर जाते हैं जाना होता है, तो उसके लिए जो तिब्बी लिहाज से जो हेल्थ उनके लिए इंतजाम रखे गए महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो बहुत सारे इसमें जो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है हर तरफ से, अगर कहेंगे हम कामयाब बनाने के लिए अमरनाथ यात्रा को।
1: जी बहुत शुक्रिया तस्कीन साहब हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को जो है इन मालूमात साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया तस्कीन साहब। ये थे श्रोताओं रामबन से हमारे संवाददाता तस्कीन साहब, मोहम्मद तस्कीन साहब, जो बड़ी जो है यादें शेयर कर रहे थे हमारे साथ कि किस तरह से जब पहले यात्रा होती थी और फिर जो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो किस तरह से जो है मोहब्बत निछावर करते थे अपने मेहमानों के लिए, उनको फ्रूट्स खिला के, यहाँ के सेब खिला के या दूसरी जो चीज़ें हैं खाना वगैरह, चूँकि अब इजाज़त नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है फिर से यहाँ के लोगों को इजाज़त मिले ताकि आप सब भी वो मोहब्बत जो है वो महसूस कर सके जो यहाँ के लोग आप सब के लिए मन में रखते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, बराबर 12:30 तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, चूंकि हम आज सभी जो हमारे संवाददाता है उनसे उनका जो अनुभव रहा है यात्रा के हवाले से, हमने वो जानने की कोशिश की और

0: उनके जो जज्बात हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। चूंकि इस वक्त हमारे श्रीनगर के जो संवाददाता है इमरान नायकू साहब, वो लाइन पर मौजूद है। हम इनसे भी हमने राबिता किया और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनका अनुभव, और ख़ास तौर पर अभी की जो सूरत हाल है। इमरान नायकू साहब, आपका स्वागत है इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त कैसा मौसम है स्टूडियो के बाहर श्रीनगर में?
1: देखिए, बिल्कुल अभी चूंकि मौसम विभाग की जो प्रिडिक्शन है आज से यानी 9 अगस्त से 11 अगस्त तक जम्मू रीजन में हैवी रेनफॉल की प्रिडिक्शन की गई है, और कश्मीर में भी मॉडरेट रेनफॉल यानी हल्की बूंदाबांदी या बारिशें होंगी, इसकी जो है पेशेंगोई की गई है, प्रिडिक्शन दी गई है। और इसी के चलते हुए जो प्रशासन है उन्होंने फैसला लिया है कि बहुत सारी जगहों पे ट्रैक काफी डैमेज हुआ है और मौसम की भी प्रेडिक्शन है, जिसकी वजह से उन्होंने यात्रा को सस्पेंड करने का ऐलान किया है। और साथ ही जो शरी मुबारक जो कश्मीर में ही है, तो उसके चलते हुए ये कहा गया है कि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक ही पवित्र गुफा तक पहुंचेगी, और 12 तारीख यहाँ श्रीनगर में उसे शरी मुबारक को शंकराचार्य मंदिर लिया जाएगा, उसके बाद अष्टमी अखाड़ा, उसके बाद दीगर मकाम पर जो अलग अलग शेड्यूल में जगहों का नाम दिया गया है, और उसके बाद फाइनली जो है पहलगाम या फिर बालता रूट के जरिए से पवित्र गुफा तक उसे पहुंचाया जाएगा। लखनऊ हम देख रहे हैं कि जहां प्रशासन की तरफ से मौसम को देखते हुए यात्रा को सस्पेंड किया गया है, वहीं देखा जाए तो फिलहाल आज श्रीनगर में इस वक्त मौसम बिल्कुल साजगार है, सुहाना है, धूप खिली हुई है। हालांकि रात के दौरान यहां बारिश भी हुई, कल भी आपने देखा होगा शहर में काफी तेज बारिशें हुई, और ये भी इतलात है कि कुछ जो हाई रीच है वहां पे इस वक्त बारिश हो रही है, और खासकर जम्मू में जो आज से प्रेडिक्शन दी गई है कि 11 तारीख तक, और एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है, इसलिए ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि यात्रा को अर्ली जो है सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन इसमें ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई खता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, और ना ही हमारे जो यात्री यहाँ पे आते हैं या जो हमारे लोग इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, क्योंकि कुदरत तक है, मौसम खराब है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसी में बेहतरी हो, हमारे जो यात्री, हमारे जो मेहमान है, शायद इसी में बेहतरी हो। कुदरत का कुछ नहीं कह सकते, बेहतर तो हमसे वही जानती है।
1: बिल्कुल जी, तो इसलिए इस चीज को रिग्रेट करना, अफसोस करना तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम देख रहे हैं ओवरऑल इस साल जो अमरनाथ जी यात्रा रही है, अराउंड 5 लाख यात्री ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है, और यात्रियों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे हमने जितने यात्रियों से मैंने पर्सनली श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैब में या बाकी जहाँ पे उन्होंने विजिट किया, यात्रियों से बात की, तो प्रशासन की अरेंजमेंट्स को लेके उन्होंने काफी अप्रिशिएट उसको किया, तारीफ की, और खासकर यहाँ के लोकल्स का जो व्यवहार यात्रियों से रहा, यहाँ के वॉलंटियर्स का, यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स का, यहाँ के हर उस फर्द, हर उस शख्स, हर उस नागरिक का जो इस यात्रा का एक हिस्सा बने, जो इस यात्रा का एक पार्ट बने, जो यात्रियों से मिले, तो हर एक का ये मानना है कि ये यात्रा बहुत अच्छी रही। हम उम्मीद ये करते हैं कि जिन लोगों ने यात्रा नहीं की इस साल और जिनकी तमन्ना ख्वाहिश थी, हम यही दुआ करते हैं कि अगले साल मौसम बेहतर रहे और उन्हें यात्रा करने का मौका मिले। लेकिन फिलहाल जो इस साल यात्रा हुई है और अच्छी और बड़ी अचीवमेंट ये है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइलस्टोन 2022 से 2026 तक की 22 लाख अमरनाथ जी यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन कश्मीर में किया है, तो शायद इससे बड़ा एप्रिसिएशन या इससे बड़ी अचीवमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी यहाँ के लोकल्स के लिए और यहाँ के यात्रियों के लिए नहीं हो सकती है। लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस साल की जो यात्रा है पीसफुल तरीके से हुई और कहीं यात्रियों की शिकायत भी नहीं रही, और अगर किसी यात्री ने कोई ग्रीवेंस, कोई शिकायत की भी, तो लेकिन फिलफोर या विद इमीडिएट बेसिस पर उस शिकायत का फिर बाद में इजाला भी किया गया, यानी उसको रिजॉल्व भी किया गया। सो हम देख रहे हैं कि उम्मीद है कि अभी जो छड़ी मुबारक यहाँ पे है वो भी पीसफुली इख्तिताम पजीर हो जाए।
0: जी इमरान साहब, चूंकि आखिरी आयाम है और हम सबसे ये एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें श्रोताओं से के साथ, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा और किस नजर से आप इस यात्रा को देखते हैं?
1: देखिए, हर एक इंसान का, हर एक शहरी का, नागरिक का, किसी भी फील्ड में हो तो उनका एक अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट और एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हम मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, तो अमरनाथ जी यात्रा में कई सालों से ऑल इंडिया रेडियो के जरिए से ही जो है कवर करता हूं, और खासकर इस आकाशवाणी के जरिए से हमें इस यात्रा को कवर करने का बहुत अच्छा मौका मिला और बहुत

0: इस यात्रा को जानने का और इसको समझने का मौका मिला। शायद इससे पहले हम यात्रा को सुनते थे, यात्रा के बारे में, और खासकर पढ़ते भी थे, किताबों में भी पढ़ा, टीवी पे देखते थे, रेडियो पे सुनते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम फील्ड में आए और इस यात्रा को कवर करने का प्रैक्टिकली मौका मिला और एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, शायद हम अपने अल्फाज में उसको शेयर नहीं कर सकते हैं या बयान नहीं कर सकते। अलबत्त एक बात ये है कि इस चीज से, एक यात्रा से एक चीज मुझे पर्सनली जो है सीखने को मिला, वो ये है कि चूंकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है जमहूरी एतबार से भी, पॉपुलेशन के एतबार से भी, और इसमें ये पता मुझे चला कि देश के कोने कोने से जो यहाँ लोग आए, जो यात्री आए, जब उनसे बात की तो एटलीस्ट ये पता चला कि लोगों की सोच क्या है, लोग हमारे जहनों में भी कुछ नेगेटिव चीजें बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी यूपी के बारे में, या किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमें इस यात्रा के जरिए से उनसे बात करने का मौका मिला तो शायद वो सारी चीजें क्लियर हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि किस स्टेट में, किस यूपी में क्या कल्चर है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कश्मीर के बारे में स्पेशली उनका क्या ख्याल है, जो कि हमारा एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कि शायद बाहर के लोग कश्मीर के बारे में कुछ और सोचते कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो चीज भी मुझे इस यात्रा से सीखने की मिली पिछले 5-6 सालों से कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कश्मीर के लोग अच्छे हैं, बाहर के लोग अच्छे हैं, और ये एक इंसानियत के नाते सब कुछ हो रहा है। मतलब हर एक का अपना अपना है, आइडियोलॉजी अपनी अपनी है, लेकिन इंसानियत, ह्यूमैनिटी जो है वो सबकी यकसा है, और इसके लिए हर एक की सोच ऐसी है। कल्चर शेयर करने का मौका मिला, बाहर के लोगों की का जो कल्चर है, कश्मीर का जो कल्चर है, वहाँ के लोगों की जो का जो थॉट है, प्रोसेस है, वो चीजें अंडरस्टैंड हुई। शायद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद
1: बल्कि मैं आपसे शेयर करती चलूं कि अभी जब हम बात कर रहे थे तस्कीन साहब के साथ, तो वो बड़ा एक खूबसूरत तजुर्बा बयान कर रहे थे कि पहले जब यात्रा होती थी तो सड़कों पर जो यहाँ के मकामी लोग जो है, जो लोकल्स हैं, वो फ्रूट्स वगैरह, दूसरी जो अशिया है खाने पीने की, वो यात्रियों को पेश करते थे, वो मोहब्बत जो थी उसका इजहार करते थे। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से जो है उसको उसकी इजाज़त अब नहीं रही है, लेकिन काफी वो जो मंजरकशी हो रही थी वो बड़ी खूबसूरत थी।
0: बिल्कुल, देखिए जैसे तस्किन साहब ने, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, ये बिल्कुल हकीकत है कि चूंकि एक ऐसा माहौल भी है जहां कुछ और भी नजदीक आने का शायद मौका मिल सकता है, लेकिन प्रशासन भी अपने तरीके से सोचता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके के भाईचारे को शायद ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हुकूमत की या प्रशासन की ये जरूरत बन जाती है वक्त की कि सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे लिए जाए जहाँ शायद लोग वो जो व्यवहार था उसको इस बार करने का शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस यात्रा को कि इस यात्रा में जो लोग आ रहे हैं, जो डिवोटीज यहाँ पे आते हैं, तो उनकी बात तो अपनी जगह पे है, जो वो कश्मीर की हॉस्पिटलिटी की, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करते हैं, यहाँ के प्रशासन की तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप लोकल से बात करेंगे तो आप देखिए उनका मतलब उनका व्यवहार कैसा है। यहाँ का लोकल जब किसी यात्री को बीमार देखता है, उसको किसी और मुश्किल में देखता, कंधों पे उठाता है, हालांकि वो उससे कोई पैसा नहीं लेता है, हालांकि उससे वो उसका कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ यह है कि ये एक इंसानियत के नाते सारी चीजें चलती है। और शायद अगर एक यात्रा से बढ़ के मुझे नहीं लगता है कि कोई और जरिया बन सकता है प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे और खुशहाली का, और ये जो नाता है ये आगे भी इसी तरीके से रहे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कुछ चीजें जो जैसे आपने भी तस्किन साहब का हवाला दिया है, उनको अगर शायद एडमिनिस्ट्रेशन आइंदा जहन में रखे और भी नजदीक से यात्रियों और यहाँ के लोगों को मिलने का मौका मिले, तो शायद कुछ और ही अलग पॉजिटिव मैसेज इससे भी बेहतर जा सकती है।
1: सही बात है, और एक अलग ही माहौल जो है वो बन सकता है उससे। इमरान साहब, आखिर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई यादगार लम्हा, कोई मोमेंट जो बड़ा खूबसूरत हो, या हो सकता है कि कुछ जो है तलख यादें भी जुड़ी हो यात्रा के हवाले से, जो कि आप भी कई सालों से इसके साथ जुड़े हैं, तो आप श्रोताओं के साथ जो है साझा करना चाहेंगे।
0: ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लम्हे हैं जो इस यात्रा को कवर करने के दौरान हमसे जुड़ी है, लेकिन कुछ मुझे याद है कि जब इसी साल हम पांता चौक

0: ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रा को कवर कर रहे थे, तो मैं साइड में खड़ा था, मेरे हाथ में माइक थी, तो एक फीमेल यात्री को मुझ पे नजर पड़ी और वो मेरे सामने आई और उन्होंने यात्रा से हट के मुझसे कुछ बातें की।
1: जी जी।
0: शायद मैं ऑन एयर उन बातों को
1: नहीं बोल सकते
0: ना करूं, लेकिन अलबत्ता ये है कि बातें अच्छी थी, बातें प्यार मोहब्बत की थी, बातें कश्मीर की थी, बातें भारत देश की थी, लेकिन वो लम्हा बहुत यूनिक था कि एक यंग जो डिवोटी यहाँ मुझसे जब मिली, और हालांकि मेरा कोई इंटेंशन उस टाइम नहीं था, मैं किसी और चीज की तरफ देख रहा था, और जब वो मेरे सामने आई मैंने माइक साइड में रखी तो कुछ बातें उन्होंने की और पॉलिटिकल बातें हुई, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हुई, यहाँ के कल्चर की बातें हुई, और ऐसी बातें हुई कि शायद मुझे लगता है
1: आपका दिल खुश हुआ,
0: लेकिन मुझे ऐसा सोचा भी नहीं था कि शायद यात्री भी इस तरीके की चीजें सोचते होंगे। वो एक अलग लम्हा था और छड़ी मुबारक के रिलेटेड लास्ट ईयर एक मोमेंट हुआ, वो भी एक अलग लम्हा था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यात्रा के दौरान शायद हम जो हम हमारे साथ हुई है या हमने एक्सपीरियंस किया है उनको भूल नहीं पाएंगे। अलबत्ता हम बस यही दुआ करते हैं कि आइंदा भी हमें इसी तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ यात्रा को कवर करने का और उनसे मिलने का मौका मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक अमन की फिजा कायम हो, यहाँ पूरे देश में
1: सब मोहब्बत से रहे। जी जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमसे जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें जो है हमारे साथ हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी श्रोताओं, ये थे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू साहब जो अपनी कुछ खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हमारी भी प्रार्थना है कि ये यात्रा जो है ये मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, ये हम सब के लिए देश भर में बल्कि ग्लोबली मैं कहूँगी कि सब जो लोग हैं वो मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे, और मोहब्बत और इंसानियत से बढ़कर शायद ही कोई चीज हो सकती है। और हमारा ये ट्रांसमिशन भी जो है आप सबकी सेवा के लिए ही जो है सेवा में रहता है लगातार, और हम भी कोशिश करते हैं मोहब्बत बांटने की आप सबके साथ, और आप लोगों की मोहब्बत भी हम तक पहुंचती है, जिसकी एक मिसाल है हमारी मोहतरमा जो हमारी रेखा मैम है, रेखा निरंजन साहिबा, जो हाल ही में हमारे स्टूडियो भी आई थी हमसे हम सब से मिलने के लिए, और हमें अक्सर सिखाती रहती हैं। रेखा मैम, आप के लिए हम यही कहेंगे कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आपकी मोहब्बतें भी जो हम तक पहुँचती रहती है उनका भी बेहद शुक्रिया। प्रार्थना है कि हमेशा जो है हमारा साथ यूँ ही बना रहे। आप भी बने रहिए इस विशेष प्रसारण में, बराबर 12:30 तक मैं आपकी रेडियो साथी आपके साथ रहूंगी, शाइस्ता बुखारी।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स निवजन एआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि पूजा प्रार्थना त्यौहार आस्था और सदियों पुरानी धार्मिक रिवायात का एक खूबसूरत संगम है। श्रावण मास के दौरान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से श्रद्धालु घाटी की ओर रुख करते हैं। इस पूरे दौर में कई अहम तिथियों, त्योहारों और पूजा रसूमात का खास एहतमाम किया जाता है और इस सिलसिले का आगाज जो होता है वो प्रथम पूजा से होता है। प्रथम पूजा की बात करेंगे कुछ ही समय में, आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे प्रथम पूजा की। प्रथम यानी पहली पूजा। इस मौके पर बाबा बर्फानी से यात्रा की कामयाबी, यात्रियों की सुरक्षा, सुख शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। इस पूजा में भूमि पूजा, नवग्रह पूजा और दूजा रोहन जैसी रस्मात शामिल होती हैं। भूमि पूजा की बात करें तो भूमि पूजा के जरिए धरती माता का आह्वान किया जाता है। नवग्रह पूजा नवग्रहों के लिए प्रार्थना की जाती है, जबकि दूजा रोहन जो है इसके जरिए मुकद्दस धूप जो है लहराया जाता है। यानी यात्रा के आगाज ही में ये पैगाम मिलता है कि ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि धरती या प्रकृति और परमात्मा के तय जो है सम्मान और श्रद्धा का सफ़र भी है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, आगे भी बात करेंगे, आगे बात होगी छड़ी मुबारक की। तब तक आप सुनते रहिए भक्ति संगीत।

श्रोताओं, अब बात करते हैं छड़ी मुबारक की, श्री अमरनाथ जी यात्रा की सबसे अहम रिवायत में से छड़ी मुबारक की रिवायत है। छड़ी मुबारक भगवान शिव की मुकद्दस चांदी की छड़ी है, जिसे आस्था और श्रद्धा के साथ जोड़ा जाता है। छड़ी मुबारक का मुकद्दस सफ़र दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शुरू होता है। इसके बाद मुख्तलिफ मजहबी रसूमात के साथ ये मुकद्दस छड़ी पहलगाम की तरफ ले जाई जाती है। पहलगाम में भूमि पूजन की रस्म अदा की जाती है। इसके बाद छड़ी मुबारक से जड़ी दीगर रिवायत आगे बढ़ती है और फिर ये

श्रोताओं, अब बात करते हैं नाग पंचमी की। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अहम त्यौहार है, जिस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। भगवान शिव के साथ नाग की अलामत का भी गहरा ताल्लुक है। अमरनाथ की रिवायत में शिश नाग का जिक्र भी खास अहमियत रखता है, इसलिए नाग पंचमी के मौके पर छड़ी मुबारक से वाबस्ता खसूसी पूजा और मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं। यहाँ शिव भक्ति, नाग पूजा और अमरनाथ यात्रा की रिवायत एक खूबसूरत रूहानी रिश्ते में जुड़ जाती हैं। सामीन, यात्रा के दौरान मुकद्दस गुफा में भी मुख्तलिफ मजहबी रसूमात और पूजा का सिलसिला जारी रहता है। आरती, वैदिक मंत्र, शिव पूजन और रुद्र अभिषेक जैसी रिवायत के जरिए गुफा

के मजहबी माहौल को बरकरार रखा जाता है। रुद्र अभिषेक में भगवान शिव की पूजा मखसूस वैदिक मंत्र और आस्था के साथ की जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में, बराबर 12:30 तक मैं आपकी रेडियो साथी आपके साथ बनी रहूंगी। शाइस्ता बुखारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, नेवज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, बराबर 12:30 तक मैं आपके साथ बनी हूँ, आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। हम मुख्तलिफ रसूम के हवाले से बात कर रहे थे। श्रोताओं, श्रावण पूर्णिमा की अगर बात करें, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन भी इस यात्रा के इख्तितामी मरहले से जुड़े अहम मजहबी दिन है। श्रावण पूर्णिमा को शिव भक्ति के लिए इंतहाई मुकदस माना जाता है, जबकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के अहद का त्यौहार है। यूं अमरनाथ यात्रा के पूरे सफर में हमें मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं, जैसे प्रथम पूजा का आगाज, श्रावण मास की शिव भक्ति, छड़ी मुबारक का मुकदस सफर, नाग पंचमी की आस्था और श्रावण पूर्णिमा के साथ इख्तिताम। श्रोताओं, यही इस यात्रा की खूबसूरती है कि यहाँ त्यौहार भी आस्था से जुड़ते हैं, पूजा भी, प्रार्थना भी बन जाती है और पहाड़ी रास्ता भी एक रूहानी सफर का रूप इख्तियार कर लेता है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, OTT प्लेटफॉर्म वीवर्स न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल के अलावा आप हमें DTH के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले कि इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ाव से ताज़ा सूचनाएँ, मौसम की अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट्स भी सुनवाते रहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से

छोनी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का

0: पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through the 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Jammu and Kashmir, the spirit of patriotism will resonate across Union Territory from today as all 20 districts launch a week-long series of programs under Har Ghar Tiranga Campaign 2026. Akashvani Jammu correspondent reports that this year's campaign holds special significance as it coincides with the 100

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। श्रोताओं, हम मुख्तलिफ रस्मों के हवाले से आज बात कर रहे थे। इन्हीं रस्मों में एक और रस्म जो है वो है कांवड़ यात्रा। श्रोताओं, भारत की धार्मिक परंपराओं में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, गंगा और दीगर पवित्र नदियों से जल भरकर भगवान शिव की मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। कांवड़ के दोनों सिरों पर जल से भरे कलश होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाकर लंबी दूरी तय करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान यात्रा के दौरान श्रद्धा और आस्था बनी रहती है और प्राणिक मान्यता है कि समंदर मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में दान किया था। इसी मान्यता के तहत श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। श्रोताओं, कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि अनुशासन, संयम, त्याग, सेवा और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। आप बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेवर्स न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल के अलावा आप हमें डीटीएच के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, अभी तक आपके साथ मैं बनी थी आपकी रेडियो साथी शाइस्ता बुखारी। अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और इससे पहले मैं आपसे अनुमति ले लूँ, आपको बताती चलूँ कि अब के बाद आपके साथ जुड़ेगी आपकी रेडियो साथी सबरीना महराज। आपसे अनुमति है कि हमें भी अपनी जो है प्रार्थनाओं में याद रखिए और हमारे लिए भी हमेशा जो है अच्छी अच्छी दुआएं किया करें। इस वक्त आपसे इजाज़त लेते हैं, आप सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।

श्रोताओं, दिन के 12:30 हो रहे हैं। अब से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं सबरीना महराज आपके साथ जुड़ी रहूंगी और यात्रा से मुतल्लिक अपडेट्स और दीगर जानकारी पहुंचाती रहूंगी। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों से ताज़ा सूचनाएं, मौसम की अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट्स भी सुनवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें।

0: और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
2: जी श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो 57 दिवसीय श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ इस साल 3 जुलाई को हुआ था। यात्रा चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से एक साथ शुरू की गई थी। अब तक 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में भगवान श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए हैं, लेकिन श्रोताओं, हालिया वर्षा के सबब यात्रा के रास्ते कुछ हसास हिस्सों में मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता महसूस की गई है। इन मकामात पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की जानिब से ट्रैक की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले चंद दिनों में मौसम के विपरीत रहने की पेशगोई भी की गई है। यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 2026 से, जो कि आज की डेट है, चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से यात्रा को अस्थायी तौर पर मुलतवी रखा जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा शाम के 6 बजे तक और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DTH की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, दिन के 1 बज रहे हैं। अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री ने आज गोरीमेदु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के

0: महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Delhi, as part of the campaign, Lok Sabha BJP MP Basuri Swaraj paid floral tributes at the memorial of Pandit Madan Mohan Malviya in Malviya Nagar, followed by Tiranga Yatra from Pilanji village to Greater Kailash. Speaking to the media, Ms. Swaraj said the BJP has launched a week-long campaign starting today, during which party office bearers and workers will visit the memorials of national heroes and martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to the freedom fighters who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, "They united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die." In a social media post, the Prime Minister said, "Their courage will always remain an inspiration for every Indian." Union Home Minister Amit Shah said the three new criminal laws introduced by the Modi government, replacing the colonial era laws, are based on the three important pillars, that is technology, timeline and trust. He said this at the presentation ceremony of the President's Police Colour to the Puducherry Police.

0: पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: जी श्रोताओं, आपने आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनी। बने रहें हमारे साथ।
3: करेंगे 1983 में बनी

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स और DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आज से यानी कि 9 अगस्त 2026 से चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से यात्रा को अस्थायी तौर पर मुलतवी रखा जाएगा। श्रोताओं, इस साल की यात्रा का एक अहम पहलू ये भी है कि अब तक 4,80,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं, जो इस अजीम आस्था यात्रा के लिए लोगों की गहरी श्रद्धा और विश्वास को जाहिर करता है। वही यात्रा की पूर्ण आहिति रिवायती तौर पर छड़ी मुबारक के साथ होगी और 28 अगस्त 2026 को छड़ी मुबारक अपनी रिवायती पहलगाम मार्ग से आगे बढ़ेगी और इसी के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का समापन होगा। आप हमारे साथ शाम के 6 बजे तक बने रहिएगा और इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिएगा, सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

जी श्रोताओं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने तमाम यात्रियों से अपील की है कि वो वक्तन फवक्तन जारी की जाने वाली एडवाइजरी और दिशा निर्देशों पर अमल करें। श्रोताओं, यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि ये आस्था, श्रद्धा, संयम और विश्वास का सफर है। इसलिए जब कुदरत अपनी रफ्तार को बदलती है, तो हमें भी सब्र और संयम के साथ इसके इशारों को समझना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा ही सबसे पहली तरजीह है, और इसी सुरक्षा के साथ ये पवित्र यात्रा अपनी पूरन और उसके मुताबिक जो छड़ी मुबारक हैं उसके ज़रिए 28 अगस्त को संपन्न होगी। आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स। आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, दिन के 1:50 होने वाले हैं। अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: गौतम हुंदर, नमस्कार। आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए मुकर्रर वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1,300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3,00,000 से ज्यादा लोगों को दीगर मुकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिया ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती वर्से का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी 20 जिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस साल की मुहिम खास अहमियत के हामिल है, क्योंकि मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह कौमी परचम और कौमी गीत के साथ हुब्बुल वतनी का एक मुनफरिद जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में मजकूरा मुहिम के तहत लोकसभा से

0: बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर किए और इसके बाद पिलांजी विलेज से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस बार का यौम आज़ादी खास तौर पर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये भारत का 80वां यौम आज़ादी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज किया है जिसके दौरान पार्टी के ओहदेदार और कारकुन मुल्क के जाबाजों और शहीदों के मेमोरियल पर जाएंगे।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जांबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आज़ादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाईस तहरीक रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। यौम आज़ादी के मौके पर मध्य प्रदेश में 124 कैदियों की सज़ा में नरमी की जाएगी। इनमें से उम्र कैद की सज़ा काटने वाले 118 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा जबकि 6 दिगर कैदियों को खसूसी रियायत दी जाएगी। इन कैदियों के अच्छे तर्ज अमल और जाब्तों के मुताबिक काम करने के उनके रवैये की बुनियाद पर ये रियायत दी जा रही है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करने के लिए दीगर कैदियों की भी हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा रिहा किए गए कैदियों को मुआशरे के असल धारे में वापस आने का मौका मिलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नौआबादियाती दौर के कवानीन की जगह मोदी सरकार ने जो तीन नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं वो तीन अहम सुतूनों टेक्नोलॉजी वक्त की हद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने गौर रेमिडो में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पर पुदुचेरी पुलिस के अहलकारों को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम पेश करने की तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: जनाब अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज भी कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि मजकूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाका खेज मादों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले NIA ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बालासोर में जलाका और भद्रक में बैतरानी और सलांदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है जबकि संबलपुर में हीराकुंड डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की

0: इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। चीन में शदीद आंधी तूफान डॉल्फिन से निमटने की गरज से शंघाई के दो हवाई अड्डों ने 1,300 से ज़्यादा परवाजें मंसूख कर दी हैं, जबकि हुकाम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। कल ये शदीद तूफान ताइवान की राजधानी ताइपे समेत मुल्क के शिमाली हिस्सों में पहुंचा था, जिसके सबब वहां तेज बारिश हुई। ताइवान की बाज़ हवाई कंपनियों ने भी चीन जाने वाली अपनी परवाजें मंसूख कर दी हैं। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा ने आज सुबह कोरिया मास्टर्स 2026 के ख्वातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन के खिलाड़ी हान चियांशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर ये बावकार खिताब हासिल किया। इस जीत के साथ ही आसाम की इस खिलाड़ी ने अपना पहला BWF टाइटल जीता। अश्मिता चलिहा ने 2024 की एशियाई टीम चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया था। खास खास खबरें एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए मुकर्रा वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says 3 new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests 1 who accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive flood concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chaliha clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. The Har Ghar Tiranga campaign has been celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage. The campaign marks the 5th year of the Har Ghar Tiranga initiative, which began in 2022 and has since evolved into one of the country's largest public participation movements. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebration's mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. Vice President C.P. Radhakrishnan today hoisted the national flag at the flag point in Sri Vijayapuram, the capital of the Andaman and Nicobar Islands, as part of the Har Ghar Tiranga campaign. On the occasion, he paid tribute to the brave freedom fighters. The Vice President also attended the state function, Tiranga Concert on Vande Mataram, held at the auditorium of Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology. In his address, the Vice President recalled the glorious history of the Andaman and Nicobar Islands associated with India's freedom struggle. He said this is the very land where freedom fighters endured severe torture and unimaginable hardships for the country's independence.

0: women's singles title for India after Tanvi Sharma's victory at the Taipei Open last week. India's medal tally rises to 3 at the World Athletics Under-20 Championship in the United States. Basant Kumar Meghwal won a silver in high jump, while Shahnawaz Khan wins a bronze in the long jump today. In men's high jump, 19-year-old Meghwal cleared his personal best of 2.21 meter to win a silver medal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive floods concerns in Odisha with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chalia clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: हर घर तिरंगा।
3: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
4: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: Uparashtrapati Radhakrishnan 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
5: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडु स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
6: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
3: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा

0: स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश,

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेनशी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय बाबा बर्फानी।
3: श्री जी श्रोताओं, आपने दिल्ली से समाचार सुने। आप दिल्ली से समाचार सुन रहे थे। श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों से ताज़ा सूचनाएं, मौसम की अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट्स भी सुनवाएंगे। आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहें।

0: श्रोताओं, हमारे साथ अनंतनाग से एस तारिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो हमें अमरनाथ यात्रा के हवाले से अपडेट देंगे। जी तारिक साहब, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के हवाले से।
1: बहुत शुक्रिया सबरीना जी, इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा सलाम। 52 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब 20 दिन शेष रह गए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहलगाम से पवित्र गुफा तक, अगर मौसम की बात करें तो यात्रा मार्ग पर आज मौसम अबरालों रहने के साथ साथ बीच में हल्की सी बारिशें भी हुई, और इस वक्त जो मुझे इन्फॉर्मेशन है तो इस वक्त मौसम खुशगवार है, थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ गई है। तो पहलगाम और चंदनवाड़ी के इलाकों में आज दर्जे हरारत कदरे कम था, यानी 6 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जो खा गई थी। तो यात्रा मार्ग के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम निस्बतन ठंडा और नमी से भरपूर रहा। बारिश और धुंध के समय पहाड़ी मार्ग पर फिसलन भी पैदा हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त वहाँ मौसम बिल्कुल अबरालूद है, लेकिन कोई बारिश नहीं हो रही है। हाल ही में हुई जो बारिशों के सबब जो यात्रा मार्ग की कई हसास

0: इकदाम पर मरम्मत और रखरखाव की काम जारी था। ये काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अंजाम दी जा रही है। वो इस कोशिश में है कि ये रोड को जल्द से जल्द काबले आमद रफ्त बनाया जाए। तो मौसम के नामुवाफिक हालात और यात्रा मार्ग पर जरूरी मरम्मत का काम के पेश नजर जो प्रशासन ने आज 9 अगस्त यानी आज से चंदनवारी और बालता दोनों मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा को मुलतवी रखने का फैसला किया है। तो इस बात की जो पुष्टि की है डिविजनल कमिश्नर उमेश गर्ग ने की है कि भारतीय मौसम विभाग की जानिब से आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम के नामुवाफिक रहने की जो पेशगोई की गई थी श्रद्धालुओं की हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी जो है यात्रा को निलंबित रखा जाए। डिविजनल कमिश्नर ने इसके बगैर भी सभी श्रद्धालुओं से और खासकर वो जो वहाँ बिल्कुल जो खिदमत गुजार लोग थे या बाकी जबानों के जो एहलकार थे उनसे भी अपील की है कि वो अपनी हिफाजत और यात्रा की सुचारू पुरमन और सुगम संपोषण के लिए प्रशासन की जानिब से वक्तन फक्तन जो जारी की जाने वाली निर्देश होते हैं या सलाह मशवरा होता है तो उस पर सख्ती से अमल करें। प्रशासन के अनुसार यात्रा की बहाली का निर्णय मौसम की सूरत हाल और यात्रा मार्ग की हालत को जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा और तब तक फिलहाल जो यात्रा से पहले 28 अगस्त से पहले पहले यानी 26 अगस्त को जो छड़ी मुबारक पहलगाम के रास्ते से जो 3 दिन का जो त्रिरात्रि रात में गुजारते हैं 3 जगहों पे रुकते हैं उनका इंतजाम भी किया जा रहा है। उनके लिए भी ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है, ट्रैक पर बिल्कुल मरम्मत का काम जारी है। तो ये सिलसिला अभी देख ले रहे हैं कि जो यात्रा के जो हमारे जो आने वाले लोग थे जो उन्होंने अभी तक जो दर्शन किए हैं वो तकरीबन 4,80,000 को पहुंच गए थे और ये एक वो तादाद है जो हमारे जो प्रशासन के टारगेट से भी आगे बढ़ गया था। तो आप चूंकि यहाँ से अब आखिरी दिन यात्राओं के चल रहे हैं तो इस हवाले से जो बाकी मानता जो यात्री आ रहे हैं वो उनका जो तादाद है वो धीमी पड़ गया है। ये तो कोई अनफॉर्चुनेट नहीं है लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमेशा पिछले दिनों में फिर जो यात्रा की जो रफ्तार होती है वो धीमी पड़ जाती है। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से आपने अहम जानकारी साझा की, धन्यवाद। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ अनंतनाग से हमारे संवाददाता एस तारिक साहब जिन्होंने अमरनाथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से अहम जानकारी दी। आप इस विशेष प्रसारण के साथ हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

0: जी श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतलिक 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इमरान नायकू साहब, जो कि हमें अपडेट देंगे 2026 सालाना श्री अमरनाथ जी के हवाले से मुकम्मल तफसील के साथ। जी इमरान साहब, हमें 2026 सालाना अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से अपडेट दीजिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
1: जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में लगभग 5,000 अमरनाथ जी यात्रियों ने आज जो है पवित्र गुफा का दर्शन किया है। लेकिन जो कल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से ये कहा गया है कि अब यात्रा फिलहाल दोनों साइड से पहलगाम और बालतल रूट से सस्पेंड होगी, ड्यूटे जो रिसेंट रेन्स हुई और जो रिपेयर का काम चल रहा है और इन ट्रैक्स के ऊपर और जो फोरकास्ट एडवाइजरी दी गई है एडवर्स, तो उन कंडीशंस को देखते हुए अमरनाथ जी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवरऑल 2026 में मौसम खराब होने के बावजूद भी लगभग 5 लाख अमरनाथ जी यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया और ये बहुत अच्छी खबर है इस यात्रा को लेके। अलबत्ता यात्रा को लेके जो छड़ी मुबारक है वो श्रीनगर में ही है और एज पर द शेड्यूल वो पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। और जैसे कि कल भी और सुबह भी हमने अपडेट किया था कि 12 जुलाई को श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर इसे पूजा के लिए लिया जाएगा, उसके बाद 13 तारीख को दक्षिण अमरेश्वर मंदिर और उसके बाद भी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इस छड़ी मुबारक को मुख्तलिफ जगहों पर लिया जाएगा और लास्ट पर 28 अगस्त को इसे बाजाब्त तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा की पवित्र गुफा तक पूजा के लिए लिया जाएगा। और इस साल अमरनाथ यात्रा पीसफुली अभी तक हमें देखने

0: मिली है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने कहा कि रेनफॉल्स की वजह से जो ट्रैक्स जो उनको जो नुकसान डैमेज हुआ है उनकी रिपेयरमेंट को लेके और जो एडवर्स या जो मौसम विभाग की तरफ से प्रेडिक्शन दी गई है उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सस्पेंड किया है। लेकिन यात्रा 2026 में जितने भी यात्रियों से हमारी बात हुई है और सब ने अमरनाथ जी यात्रा की अरेंजमेंट्स को लेके, फैसिलिटीज को लेके या फिर जो हम कहें कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे उन पर उनका एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है और उन्होंने उस पर काफी जो है खुशी का इजहार किया है कि इस तरीके की उन्हें अरेंजमेंट्स या फैसिलिटीज मिली है। अगर कुछ जगहों पे कहीं ग्रीवेंसेस भी मिली है लेकिन उन ग्रीवेंसेस को भी या उन शिकायत को भी गवर्नमेंट ने विद इन नो टाइम जो है रिजॉल्व किया और अगर कहीं पे असिस्टेंस की जरूरत पड़ी अमरनाथ जी यात्रियों को तो वहाँ पे भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनको वहाँ वो असिस्टेंस मिली या मदद मिली। और जम्मू कश्मीर की प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF, ITBP, DSF और साथ साथ SSB और BRO, ट्रैफिक पुलिस और जितने भी सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने एक अहम रोल इस यात्रा को लेके प्ले किया है, अपनी खिदमात अंजाम दिया और वॉलंटियर्स, यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स, यहाँ के लोकल्स, हर एक ने इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए अपना एक अहम योगदान इसमें पेश किया है। और साथ ही यात्रियों ने भी कश्मीर की मेहमान नवाजी, कश्मीर के लोगों के व्यवहार, कश्मीर के लोगों के बिहेवियर, कश्मीर के लोगों की का जो उनको सपोर्ट मिला है, जो असिस्टेंस मिली है, जो जहाँ पे उनको जरूरत पड़ी उसको लेके उन्होंने तारीफ भी की, खुशी का इजहार भी किया, शुक्रिया भी अदा किया, जैसे जितने यात्रियों से हमारी स्पेशली इंडिविजुअली बात हुई है
1: जी।
0: और हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मौसम की वजह से जहां डिसरप्शन हुआ लेकिन जिन यात्रियों को मौका मिला यात्रा करने का वो खुशी से यहां से निकले, किसी तरह की कोई उन्हें परेशानी या मुश्किलात नहीं हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरीके से यात्रा पुरमन तरीके से जारी रहे और जहां जहां यात्रियों की शिकायत इस यात्रा को लेके और बेहतर करने की मिली है हम उम्मीद करेंगे कि हमारी जो प्रशासन है उसको रिव्यू करेगी और आइंदा उस चीज को मद्देनजर रखेगी। और खासकर जो वेदर फोरकास्ट को लेके जो यात्रा को अर्ली सस्पेंड करना पड़ा, शायद ये भी उम्मीद हम लगाते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले फ्यूचर में इस तरीके का एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा SOP बनाया जाएगा सो दैट कि इस श्रावण के महीने में जो यात्रा बारिश की वजह से डिसरप्ट होती है इसका सामना ना करना पड़े। और कहीं ट्रैक्स की ज़रूरत और इम्प्रूव करने की जो बात हुई है या कहीं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जो अलग अलग फीडबैक आया है उसको भी देखा जाएगा या लोकल्स को लेके जो बात हुई है कि एटलीस्ट यात्रियों को यहाँ के एग्जीबिशंस, यहाँ के स्टॉल्स, यहाँ के बाकी मार्केट्स तक अच्छी तरीके से उनको एक्सेस मिले तो उसका भी उम्मीद है कि आइंदा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जनरली हम देखें या ओवरऑल अगर हम इस यात्रा को लेके देखें तो काफी कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से या लोकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यात्रा पूरा मन तरीके से होना ही सबसे अच्छी और खुशी की बात है और यही सब लोग उम्मीद भी करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि जो छड़ी मुबारक का जो सिलसिला जारी अभी है, शेड्यूल है, तो वो भी बड़े ही पुरामन तरीके से इख्तिताम को पहुंचे, जैसे कि 28 अगस्त का उसकी लास्ट शेड्यूल दिया गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा में जो अमन और शांति की दुआएं मांगी गई है वो भी कबूल हो जाए और जो यात्री अभी कश्मीर में है वो भी बगैर किसी परेशानी के अपने अपने घरों तक, अपने स्टेट्स और यूटीज तक पहुंचे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान साहब, आपका अपनी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से अहम जानकारी साझा की है, धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ इमरान नायकू, श्रीनगर से हमारे संवाददाता, जिन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से अहम अपडेट हम तक पहुंचाई है। और आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग

0: आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें।

0: जी श्रोताओं, इस वक्त फोन कॉल पर हमारे साथ मोहम्मद तस्कीन बानिहाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो हमें श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के हवाले से अपडेट देंगे। जी मोहम्मद तस्कीन साहब, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है 2026 श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से।
1: देखिए 2026 श्री अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी, जब इसका आखिरी जो इसका मजहबी जो रसूमात अदा की जाएंगी। तो उससे पहले जो यात्रा अब तक का जो अगर 2026 का कहेंगे तो कामयाब तरीन यात्रा कहेंगे। बारिशों के बावजूद 22 लाख से जायद जो लोग हैं वो सफर पर आए हैं, हिमालयी पहाड़ों में पहुंचे हैं दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा के। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो चैलेंजिंग रहा इस टाइम का। थोड़ा सा बीच में हमारा 18 जुलाई से अगर कहेंगे तो बारिशें हो रही हैं अब तक पूरे इस रामबाग, खासकर नेशनल हाईवे इस क्षेत्र की बात करेंगे, तो इस वजह से जो मजमुई तौर कहेंगे कि बहुत बेहतर यात्रा रही। जो लोग आए खुशी खुशी आए और खुशी खुशी गए, कोई अचानक छोटे मोटे हादसे हुए लेकिन कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया जिसमें ये कहें कि किसी की जान चली गई हो, तो कोई ऐसा कोई वाका पेश नहीं आया। और मजमुई तौर जो 2 जुलाई से शुरू की गई, आज 37वां दिन था और पिछले 2 दिन से अब यात्रा को मनसूख कर दिया गया, फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है इंतजामिया की तरफ से, कि ट्रैक्स का काम किया जाना है ये जो बाल तल से भी और यहाँ पहलगाम के रास्ते से भी। तो इस दौरान आज जो जम्मू से दूसरा दिन था यात्रा की वो मौतली का, तो इस दौरान जो बाल तल से वापस ट्रैफिक को आज भेजा गया जम्मू की तरफ, ये 53 गाड़ियां थी जिसमें 588 जो श्रद्धालु थे यात्री थे वो सवार थे, तो इसमें 435 जो मर्द थे, 83 खवातीन थी, 4 बच्चे थे, जो 66 साधु थे। तो इन सब ने जो दर्शन मुकम्मल किए हैं और लग रहा है कि जो यात्रा को मुअत्तल किया गया है, तो उससे पहले ये कश्मीर से वापस आने वाला आखिरी जत्था होगा, आखिरी काफिला होगा। और कल भी एक काफिला गया, इसमें 1200 यात्री जम्मू की तरफ रवाना किए गए थे। तो इसलिए ये लग रहा है कि आज शायद फिलहाल, जब तक मौतली का दोबारा कोई इस पर रिव्यू नहीं किया जाता या इसको बहाल नहीं किया जाता है, या जो आगे जो फंक्शंस इसके रिलेटेड मतलबी जो रसूमात अदा करने हैं अभी जो छड़ी मुबारक वगैरह को लेकर, तो उसमें जो हो सकता है उस वक्त ये अलाउ किया जाए, क्योंकि वो आते हैं पिछले साल भी जम्मू से खसूसी तौर कुछ जो जो धार्मिक गुरु होते हैं साधु होते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आगे चलकर यह हुक्काम क्या इस बारे में कहते हैं, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर साहब ने कल एक ऑर्डर जारी करके श्रीनगर से ये कहा कि 9 अगस्त से जो यात्रा है फिलहाल मुलतवी रहेगी। अगले अहकाम जो है उसका हमें भी और श्रोताओं को भी जो हमें सुनने वाले हैं आराधना टीवी रेडियो पर, तो उन्हें भी वो इंतजार करना पड़ेगा।
0: जी हमें बताइएगा कि जिला प्रशासन की जानिब से इस साल जो हमारे यात्री दोस्त हैं उनके लिए खास इंतजाम किए गए थे, इतने में हमारे यात्री दोस्त जो है उनका क्या कहना है इस बारे में।
1: देखिए यात्रियों के लिए जो इंतजामात ऐसे थे कि जैसे हम 3 दर्जन से ज्यादा लंगर कहेंगे चंद्रकूट और यहाँ यात्रा निवास चंद्रकूट, चंद्रकूट हाईवे पर जहाँ पर इनको मुख्तसर वक्त के लिए रोका जाता था लंच ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए, कभी कभार ठहरते भी थे जो 2 बजे के बाद हम बार बार रोज रेडियो में बोलते थे कि कट ऑफ टाइमिंग है, तो उसके बाद जो भी रुकते थे उनके लिए इसलिए इंतजाम का बहुत था। 150 से ज्यादा जो यहाँ बानहाल में इसी तरह 150 के करीब या 100 के करीब रामबन में जो एम्प्लॉयज को इसमें ऑफिसर्स को एसडीएम्स को तहसीलदार्स को जो एक्सीएंस है मतलब सबको इन्वॉल्व किया गया था, एम्प्लॉयज की पूरी फौज रखी गई थी। तो इसलिए यात्री जो है खुश है, जब भी बात की हमने हमने पीछे भी बहुत सारी उनकी आवाजों के साथ उस लोगों तक बात पहुंचाई, श्रोताओं तक बात पहुंचाई, जिसमें उसमें जो लोग कितना खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसे सबसे कामयाब तरीन यात्रा मानते हैं, मतलब पिछले सालों के मुकाबले मतलब हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते हैं। जैसे हमने पीछे भी एक बार बोला कि जब शैतानाला के रास्ते हम जाते थे यात्रा लेकर, तो वहां पर इतना कचरा जमा हो जाता था जिसे आगे मतलब म्यूनिसिपल वालों को महीने लग जाते थे उसको ठिकाने लगाने में। इसी तरह अब की बार जो अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसमें एक

आपका जो सॉइल वेस्ट या वेस्ट जो भी होता है तो उसका मैनेजमेंट के लिए बड़ा इंतजाम आते हैं। इसलिए सेहत और सफाई, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, खाने पीने का इंतजाम, बिजली पानी जो भी सहूलियात होती है वो मैसर है। बहुतों ने बोला जैसे हम घर में हैं, जैसे हम कोई मतलब मंत्री है ऐसा हमें स्वागत किया गया। और हर वक्त डीसी साहब जो रामबन के हैं, हमारे एसएसपी साहब, एडीसी साहब जो नोडल अफसर है, इसके

0: ने या हमारे संवाददाता हिंदू ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से हम तक जानकारी पहुंचाई है। और इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ाव से ताज़ा सूचनाएं, मौसम की अपडेट्स या यात्रियों के अनुभव और खासकर हमारे जो संवाददाता हैं उनकी विशेष रिपोर्ट्स भी सुनवाते हैं। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

जी श्रोताओं, इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों से ताज़ा सूचनाएं, मौसम की अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे जितने भी संवाददाता हैं उनकी विशेष रिपोर्ट्स भी सुनवाते हैं। आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं। FM पहलगाम 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR, DTH की आराधना सर्विस और मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, भगवान शिव को सनातन रिवायत में महादेव, भोलेनाथ, शंकर और नीलकंठ जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। वो त्रिदेव में एक अहम मकाम रखते हैं और उन्हें ध्यान, विराग, ज्ञान, कृपा और मोक्ष की अलामत भी माना जाता है। कश्मीर के बुलंद बाला हिमालयाई पहाड़ों में वाकया मुकद्दस अमरनाथ गुफा भगवान शिव के अकीदतमंदों के लिए एक इंतहाई मुकद्दस तीर्थ स्थान है। यहाँ कुदरती तौर पर बनने वाला बर्फानी शिवलिंग अकीदतमंदों के लिए बाबा बर्फानी का मुकद्दस रूप है। मजहबी रिवायत के मुताबिक माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत और अमृतों के राज के बारे में सवाल किया। भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का फैसला किया और इस राज को सुनाने के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां कोई दूसरा जानदार मौजूद ना हो। इसके बाद क्या हुआ हम आपको जरूर सुनाएंगे, उससे पहले ये भक्ति संगीत और हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में बने रहिए।

0: जी श्रोताओं, हमारे साथ इस वक्त फोन कॉल पर हमारे जम्मू से संवाददाता जावेद मेहराब जुड़ चुके हैं, जो हमें श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से हम तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। जी जावेद साहब, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से।
1: जी पवित्र श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा तीर्थ यात्रा के श्रद्धालु, मैं बताऊं आपको कि यहाँ निवास स्थान भगवती नगर में जो है दोबारा आज 2 दिनों से स्थगित है, लेकिन इस दौरान जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं वो उसी आस्था के साथ इंतजार में है कि उन्हें जल्द ही अनुमति मिलेगी और वो दोबारा इस तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि ये तीर्थ यात्रा लगातार पिछले 1 महीने से तद्मत के साथ जारी थी और लगभग लाखों श्रद्धालु, जो लगभग 4,80,000 के करीब श्रद्धालु हैं जिन्होंने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, और इस दौरान यहाँ निवास स्थान से लेकर पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग के दौरान और उसके अलावा जब घाटी में पहुंचे दोनों मार्गों की तरफ जब ये यात्रा निकलती थी तो उसमें तमाम तरह की जो प्रबंधन है या उसके साथ जुड़े जितने भी उनको आराम देने के लिए या उनको बेहतर तरीके से पहुंचाने तक के लिए जो इंतजाम प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस यात्रा से, वो पूरा आज भी इस तीर्थ यात्रा के साथ उसी विश्वास और जोश जज्बे के साथ बराबर जुड़े हुए हैं। और तीर्थ यात्रा चूंकि अभी लगातार जारी है और यहाँ जिस तरह से इंतजाम है वो अभी निवास स्थान में पूरी तरह से बने हुए हैं, और तीर्थयात्री जो निवास स्थान के अंदर है, यहाँ भगवती नगर निवास स्थान जो पहला निवास स्थान है इस तीर्थ यात्रा का, यहाँ पर तमाम तरह के जो इंतजाम है जिसमें खाने पीने की और उसके अलावा जो प्रक्रियाएं हैं इस तीर्थ यात्रा की, उसमें पूरी तरह से किसी तरह से कोई कमी नहीं है। और खाने पीने की, यहाँ योगा की, उसके अलावा जो भी तीर्थ यात्रियों को जिस तरह की जरूरतों का सामान चाहिए होता है इस यात्रा के दौरान, उसमें पूरी तरह से प्रशासन ने किसी तरह से कोई कमी नहीं रखी है। और चाहे वो अभी यात्रा कम जरूर हुई है, लेकिन तो उसका ये मतलब नहीं कि तीर्थ यात्रा का वो जज्बा और जोश किसी तरह से कम हुआ हो, बराबर वो जोश जज्बा जारी है। और यहाँ जम्मू में आज सुबह से आसमान पर बादल तो छाए थे, लेकिन दिन ढलने के साथ गर्मी और उमस भी शहर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अभी भी आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन दिन ढलने के साथ जिस तरह किया अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, उससे ये लगता है कि बादल अपना जो बादल है वो अपना जमावड़ा बना रहे हैं। और कई बार क्या इस सावन के महीने में होता है कि बारिश कई बार

0: रात को पड़ती है, कई बार दिन में पड़ती है, कई बार किसी इलाके में पड़ती है, और मोस्टली जो मौसम विभाग ने खास तौर पर यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में, जो संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें उधमपुर है, रियासी है, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग से होता हुआ इलाका है, उसी में खास तौर पर मौसम की जो परिस्थिति है वो कई बार बदल जाती है, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रा को कई बार रोकना भी पड़ता है, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा जो है वो प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता भी है, और उसी प्राथमिकता के तहत कई बार तीर्थ यात्रियों को रोकना भी पड़ता है। और इस दौरान जानकारी के मुताबिक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने ट्रैक पर जो काम चलाया हुआ है, क्योंकि पहाड़ी श्रृंखलाओं के सफर में ट्रैक्स बनाए गए हैं तीर्थ यात्रियों के, जो बराबर जो तीर्थ यात्रा चलती है उसमें ट्रैक्स के साथ ही चलती है, और बाजाबका एक कतारों में तीर्थ यात्रा गुफा, पवित्र गुफा तक पहुंचती है। उन ट्रैक्स पर भी काम चल रहा है, उन ट्रैक्स को भी ठीक किया जा रहा है, ताकि जो भी तीर्थ यात्री कम ज्यादा, क्योंकि देखिए लाखों जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक दर्शन कर चुके हैं, और ये सिलसिला अभी जारी है, और ये जारी अभी बराबर पूर्णमासी तक जो ये रहना है वो बराबर जारी रहना है। अभी उसमें लगभग 3 सप्ताह का टाइम है, और उसी को देखते हुए यहाँ निवास स्थान से लेकर पूरा पावन द्वार तक, जो भी जो गुफा का द्वार है उस तक जो भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रबंधन है उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। यहाँ भी श्रद्धालु इस श्रावण के इस समय में निवास स्थान भगवती नगर में पूजा अर्चनाओं में, उपवास में, भजन कीर्तन में बराबर लगे हुए हैं, और यहाँ के स्थानीय प्राचीन मंदिरों का भी तक भी वो जा रहे हैं, जिनमें जहाँ स्थानीय लोग भी पूजा अर्चनाओं में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे माहौल एकदम बेहतर बना हुआ है। लेकिन स्थगित यात्रा की वजह से कुछ यात्री जरूर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द यात्रा फिर से शुरू हो, लेकिन कई बार मौसम विभाग के जो बारिश की का अनुमान लगाते हैं, या कई बार मौसम की परिस्थितियों के बारे में अपनी एडवाइजरी देते हैं, उन एडवाइजरीज में पहले दिन से जब भी समीक्षाएं होती थी, जब भी खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कई बार बड़ी उच्च स्तरीय बैठकों में उन्होंने मौसम विभाग की जो जो अनुमान है मौसम के बारे में उन पर पूरी तरह से अमल करने की उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, और प्रशासन से खास तौर पर इस बात पर निर्देश दिए गए हैं कि मौसम विभाग का जो भी अनुमान होगा उसी के हिसाब से आप, उसी को देखते हुए आप तीर्थ यात्रा को यहाँ से जाने की अनुमति देंगे। तो प्रशासन भी उसी पर अमल करते हुए और उसी एडवाइजरी को देखते हुए श्रद्धालुओं को ये पूरी तरह से सुनिश्चित करती है कि जिस तरह जैसे ही मौसम बेहतर होगा तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी, और उसके साथ साथ जो भी दूसरे प्रबंधन है, चाहे वो हमारे अपने रेलवे स्टेशन के आसपास है, क्योंकि तीर्थ यात्रा अगर जा नहीं रही है तो लेकिन बराबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वापसी भी कर रहे हैं श्रद्धालु, जो लोग जो श्रद्धालु दर्शन कर वापस लौट रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रबंधन होता है वो रेलवे स्टेशन पर भी मौजूद है, उनके हेल्प डेस्क है, उनकी वापसी है, या उसके साथ अगर वो जम्मू में रहना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रांजिट कैंप्स में जगह है, या उसके अलावा इसी निवास स्थान में लगभग 4,500 से ज्यादा तीर्थयात्री एक समय में रह सकते हैं।
1: अच्छा।
0: आज तो तीर्थयात्रा की संख्या कम है, इसलिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो अब सीमित रह गई हैं निवास स्थान तक ही, लेकिन निवास स्थान में वो जो प्रबंधन है वो उच्च स्तर का है, वहाँ तमाम खाने पीने की लंगर समितियां, वहाँ भजन कीर्तन, स्थानीय कलाकार शाम को जो है वो अपना जो भजन का कीर्तन का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें श्रद्धालुओं का मनोरंजन करते हैं, तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है तीर्थ यात्रा का जम्मू में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तीर्थ यात्रा यूं ही तीर्थ यात्रा के जो श्रद्धालु हैं उनकी इसी तरह से सेवा भाव से उनकी सेवा की जाएगी, ताकि तीर्थ यात्रा अपने आखिरी इस पड़ाव में उसी श्रद्धा, उसी आस्था और उसी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो।

0: हमें यही उम्मीद है। और जिस तरह से प्रबंधन जारी है उससे उसकी तारीफ की जानी चाहिए, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, या उसके अलावा जो प्रशासन है या प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी लगाए गए हैं वो पूरी तरह से इस तीर्थयात्रियों को पूरी तरह से सारी सुविधाएं और प्रबंधन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो तीर्थ यात्रा है वो बेहतर और सुचारू रूप से जारी है।
1: बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से देने के लिए, जावेद महराज साहब आपका
0: बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ जावेद महराज, जम्मू से हमारे संवाददाता, जिन्होंने हमारे यात्रियों के लिए अहम अपडेट, अहम जानकारी हम तक पहुंचाई है। और चूंकि इस विशेष प्रसारण में हम आपको यात्रा के मुख्तलिफ पड़ावों से ताज़ा सूचनाएं, मौसम की अपडेट्स, यात्रियों के अनुभव और हमारे जितने भी संवाददाता हैं उनकी विशेष रिपोर्ट्स भी आपको सुनवाते हैं। आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आप इस विशेष प्रसारण के साथ हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
2: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स और DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। हम आपको भगवान शिव और अमर कथा की मजहबी रिवायत सुना रहे हैं। जब मजहबी रिवायत के मुताबिक माता पार्वती ने भगवान शिव से अमृत और अमृतों के राज के बारे में सवाल किया, तो भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का फैसला किया और इस राज को सुनाने के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां कोई दूसरा जानदार मौजूद ना हो। फिर कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा, इस गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने अपने कई महबूब अलामती साथियों और जेवरात को मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ दिया। इसी रिवायत का ताल्लुक पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी जैसे मुकद्दस पड़ाव से जोड़ा जाता है। आखिरकार भगवान शिव ने अमरनाथ की मुकद्दस गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। इसलिए अमरनाथ यात्रा को सिर्फ एक मजहबी सफर ही नहीं बल्कि तपस्या, त्याग, भक्ति और आत्मिक उत्थान का सफर भी समझा जाता है। अमरनाथ का बर्फानी शिवलिंग अकीदतमंदों के लिए भगवान शिव की लामहदूद और अबदी ताकत की अलामत है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, बर्फपोश चोटियों और सख्त मौसम के बावजूद लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम बोले का जय घोष करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आप बने रहे हमारे साथ और इस विशेष

जी श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा हमें ये पैगाम देती है कि भगवान शिव सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है, बल्कि सच्चाई, सब्र, त्याग, ध्यान और आत्मिक आज़ादी के एक अजीम तसव्वुर का नाम भी है। आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। अब हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए भक्ति संगीत।

जी श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी इस वक्त की खबर यही है कि 57 दिवसीय श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ इस साल 3 जुलाई को पूरा हुआ था। 3 जुलाई को हुआ था। यात्रा चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से एक साथ शुरू की गई और अब तक 4,80,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र गुफा में भगवान श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए हैं। लेकिन श्रोताओं, हालिया वर्षा की सबब यात्रा के रास्ते के कुछ हसास हिस्सों में मरम्मत और रख रखरखाव की आवश्यकता महसूस की गई है। इन मकामात पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की जानब से ट्रैक की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले चंद दिनों में मौसम के विपरीत रहने की पेशगोई भी की गई है। फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त 2026 जो कि आज से हैं, चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से यात्रा को अस्थायी तौर पर मुलतवी रखा जा रहा है। और इस साल की यात्रा का एक अहम पहलू ये भी है कि अब तक 4,80,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं, जो इस अजीम आस्था यात्रा के लिए लोगों की गहरी श्रद्धा और विश्वास को जाहिर करता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और आप समाप्त कर रहे हैं ये विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें। भोले का नाम ले और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।

श्रोताओं, इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने तमाम यात्रियों से अपील की है कि वो वक्तन फवक्तन जारी की जाने वाली एडवाइजरी और दिशा निर्देशों पर अमल करें। श्रोताओं, यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि ये आस्था, श्रद्धा, संयम और विश्वास का सफर है। इसलिए जब कुदरत अपनी रफ्तार को बदलती है तो हमें भी सब्र और संयम के साथ इस इशारों को समझना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा ही सबसे पहले तरजीह है और इसी सुरक्षा के साथ ये पवित्र यात्रा अपनी पूर्ण इसके मुताबिक छठी मुबारक के जरिए 28 अगस्त को संपन्न होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा ये खास विशेष, क्योंकि आप श्री अमरनाथ जी यात्रा

2026 समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

जी श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 57 दिनों की ये श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ इस साल 3 जुलाई को हुआ था और यात्रा चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से एक साथ शुरू की गई थी। अब तक 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में भगवान श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए हैं, लेकिन हालिया वर्षा के सबब यात्रा के रास्ते कुछ हसास हिस्सों में मरम्मत और रख रखाव की आवश्यकता महसूस की गई है। इन मकामात पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की जानिब से ट्रैक की मरम्मत का ये कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले चंद दिनों में मौसम के विपरीत रहने की पेशगोई भी की गई है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आज से यानी कि 9 अगस्त 2024 से चंदनवाड़ी और बालतल दोनों मार्गों से यात्रा को अस्थायी तौर पर मुलतवी रखा जाएगा। और इस साल जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया कि ये यात्रा का एक अहम पहलू ये भी है कि अब तक 4,80,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं, जो इस अजीम आस्था यात्रा के लिए लोगों की गहरी श्रद्धा और विश्वास को जाहिर करता है।

साथियों, यात्रियों की सुरक्षा ही सबसे पहली तरजीह है और इसी सुरक्षा के साथ ये पवित्र यात्रा अपनी पूर्ण इसके साथ ही या इसके मुताबिक छड़ी मुबारक के जरिए 28 अगस्त को संपन्न होगी। आप सुनते रहिए भक्ति संगीत।

श्रोताओं, इस हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने तमाम यात्रियों से अपील की है कि वो वक्तन फवक्तन जारी की जाने वाले एडवाइजरी और दिशा निर्देशों पर अमल करें। यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आस्था, श्रद्धा, संयम और विश्वास का सफर है। इसलिए जब कुदरत अपनी रफ्तार को बदलती है तो हमें भी सब्र और संयम के साथ इसके इशारों को समझना चाहिए। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा ही सबसे पहली तरजीह है और इसी सुरक्षा के साथ ये पवित्र यात्रा अपनी पूर्ण परंपरा के मुताबिक छड़ी मुबारक के जरिए 28 अगस्त को संपन्न होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और सुनते रहिएगा भक्ति संगीत।

0: अमरनाथ यात्रा पे आ रहे सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के रास्ते में टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, इसीलिए अपने साथ वूलन कपड़े लेकर चलें। सफर के दौरान बारिश के आसार भी होते हैं, इसीलिए अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर और वाटरप्रूफ शूज भी साथ रखना जरूरी है। याद रहे कि अपना आईडी कार्ड, यात्री परमिट और इमरजेंसी पर्पस के लिए एक नोट साथ रखें, जिसमें आपके सफर की तारीख पे ही जाने वाले किसी और यात्री का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन.com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास।
3: श्रोताओं, 5:30 हुए हैं, आइए अब आरती सुनते हैं।
4: मां कश्चित दुख भाग भवे। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के

दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम जो भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने माँ पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर भक्त।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

जी श्रोताओं, शाम के 6 बज रहे हैं। आप अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे थे FM बालतल, FM पहलगाम और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर जावेद अहमद लोन, इरशाद अहमद लोन और उनके साथ शौकत अहमद खान, और मैं हूँ आपकी उद्घोषक सबरीना महराज और इस प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। श्रोताओं, इसी के साथ आज की ये सभा यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, शुभ यात्रा।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय।
1: सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है और हमारे हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी भक्त लोग सावन महीने में विविध प्रकार से शिव की आराधना करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव को जल चढ़ा करके अपनी मनोकामना और अपनी प्रार्थना करते हैं। इसी कड़ी में प्रस्तुत है केदारनाथ। केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध एक शिवलिंग वहां पर स्थित है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। यह कठिन यात्रा के लिए बहुत जाना जाता है। यह हिमालय की उपत्यका में स्थित है और मंदाकिनी के तट पर है। और यहाँ जो मंदिर है

बहुत प्राचीन है। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका पुनरुद्धार किया था और यहीं उन्होंने 32 वर्ष की आयु में समाधि भी ली थी। केदारनाथ धाम चौखंबा पर्वत वासुकी ताल आदि से घिरा हुआ है और यहीं ब्रह्म कमल होते हैं। इसकी महिमा इसलिए भी है कि यहाँ जो है भगवान नर नारायण ने यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक किया था और पुराणों में कथा आती है कि जब उन्होंने अभिषेक किया, तपस्या की, तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और उनके प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहाँ निवास करने का वरदान दिया और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में, केदारनाथ के रूप में वहाँ विराजमान हुए। दूसरी कथा जो स्कंद पुराण में आती है वो यह है कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद उसके पश्चाताप का विधान शास्त्रों में है, तो पांडवों ने जब युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उन्होंने राज्य भी किया और यज्ञ भी किया, किंतु हिंसा का जो पश्चाताप था वे नहीं कर पाए और उसके लिए उनको ये सुझाव दिया गया कि आप भगवान शिव की शरण में जाइए। तो वे हिमालय में भगवान शिव की तपस्या के लिए चल पड़े और केदारनाथ में जब वे शिव जी की आराधना के लिए जा रहे थे तो भगवान शिव ने अपने क्षेत्र को अपवित्रता से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और बैल का रूप धारण करके भगवान शिव आगे आगे और पांडव पीछे पीछे जाते रहे। भगवान शिव जब हिमालय में जहाँ बर्फ होती है वहाँ जब पहुँच गए तो पांडव फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ मंदाकिनी बहती है तो मंदाकिनी में जाकर के बैल रूप भगवान शिव ने डुबकी लगाई। जब वो डुबकी लगा रहे थे तो वहाँ भीम ने उनकी पूँछ पकड़ ली और वो जो पूँछ जब पकड़ी तो जो बैल का जो कुबड़ ऊपर का होता है वह वहाँ पर स्थित हो गया और भगवान शिव जो है बैल रूप से अंतर्धान हो गए, किंतु कुबड़ जो है वहाँ पर शिवलिंग के रूप में वो स्थापित हो गया और इस तरह से पांडवों ने केदारनाथ के रूप में उस ज्योतिर्लिंग की वहाँ पर तब से स्थापना मानी जाती है। तो इस तरह से केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वह शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, उसकी बड़ी महिमा है। कठिन भी है किंतु मनोकामना पूर्ण करने वाली यात्रा है और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली यात्रा है। श्री केदारनाथ की स्तुति के रूप में कुछ श्लोक यहाँ प्रस्तुत हैं।

शिवाय कपर्दिने कंटक ध्वंसकाय कुलादिभर्त्रे करुणामयाय कपालिने कूट विनाशकाय केदारनाथाय नमः शिवाय।

वर्धनाय कुबेर पूज्याय ककुत्स्थिताय केदारनाथाय नमः शिवाय। हिमालये प्रसिद्ध

0: पठति यः सदा सजीवन् सुखमाप्नोति मोक्षमाप्नोति चान्ति में। प्रसिद्ध हिमालय पर्वत में मंदाकिनी के उद्गम स्थल पर पहाड़ पर स्थित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम केदारनाथाय नमो नमः।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर।
1: राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरेउ जो चाहसी उजियार। श्रोताओं,

मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुखरूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजुन मानि है जिन्ह कहें विमल विचार। हे श्रोताओं, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की इन सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगनगिरा सुनाई पड़ी।
1: जनिदर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हऊ नरबेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हऊ दिन कर बंस उदारा। हरि हऊ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी। रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
2: चाते लक्ष्मी चापातन्या, बाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्व।

0: अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित्त ध्यान लीन होकर इसी स्थान पर बैठे रहे।
1: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
2: क्यों राजन?
1: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
1: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
2: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
1: लेकिन कौशल्या,
2: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोल ये राजन, प्रगति अग्नि चरु कर ली ने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
0: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन। आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आ गया।
5: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर कहने का आदेश दे।
2: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय में उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहर जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
5: हाँ, हाँ अरे पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगो मांगो बरु भय नभ पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
2: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि
5: जो फसुन दिमन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप परिलोचन, कृपा करो परतारित मोचन।
2: आहा, क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा, पद राजीव बरने नहीं जाए, मुनि मन मधुप बस ही जिन माही।
3: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान

0: अन्न के फलस्वरूप वरदान। ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ उर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
1: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई।
0: तानि शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहूँ सद्भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
2: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज।
3: भूल जाइए
2: आप अब?
1: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटही अनुग्रह मोरे।
2: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे, हाँ बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए, राजन अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतकपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
4: यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे, गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया, और उसके बाद

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा

0: दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु। ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने कहो, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावूं वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बद मैं होब सनाथा। देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर ने महाराज।
5: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चरति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
3: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं। किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमति हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं, इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधिदेयी आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
2: आपका कहना ठीक है। राम, लक्ष्मण, आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो। पर इधर इधर मेरे निकट आओ, तुम्हें हृदय से तो लगा लूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो, आओ।
3: वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो।

भाई विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओ, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान के ही निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत जोजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद्व यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहिल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहि कृपा करहु रघुवीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा निरखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुमार दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी।
2: अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं, सुन हर्षी सब सखी से आनी, सी ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत दे आली, सुनिजे मुनि संग आई काली, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसी देख अही देखन जोगू। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसि, चलि से सुनरिगी सभी।
3: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
4: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तुमने
3: क्या?
4: कंकन किंकिन नूपुर धुनि
3: तात,
4: मानह मदन दुंदुभि तीनि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनि।
3: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित तजे दिगंचल।
4: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
3: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात।
4: जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
3: तात आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
4: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
3: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
4: लक्ष्मण मैं असमंजस में हूँ।
3: स्वाभाविक ही है तात।
4: वह बात नहीं, सुनो, रघुबंसिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु थरई नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी।
3: लेकिन भगवान विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती हैं।
4: पर लक्ष्मण यह मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ? वह आदर्श जिनकै लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियमनु डीठी।
3: इस लता गुल्म में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
2: राजकुमारी तनिक इधर।

0: यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों श्यामल गौर किशोर सुहाए।
1: सखी
2: क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं?
1: कौन अच्छा की बात है?
0: देखो ना लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु जलत पटल बिल गाई।
2: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
3: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
0: राजकुमारी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ बोप किशोर देखी कि न ले हूँ।
2: सकुचो मत राजकुमारी।
0: नयन उधर कर देखो ना
4: सन्मुख आमने सामने दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
3: सखियो मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
5: क्या हुआ क्या हुआ राजकुमारी?
0: चित्त तो ठीक है ना?
5: कैसी बात पूछती है तू?
3: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी
5: क्षोभ क्यों?
3: सुमेर पिता पनु मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
5: सखियो राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना चाहिए।

0: मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उर्पुर सबही के।
1: सुनु सीर, सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलही सो बरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।